नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आज शनिवार है। राष्ट्रीय शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई 2026। इस समय हमारी घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी का स्वागत है।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित

0: रेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।
3: आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

लेने का और सबसे बढ़कर अपने देश के लिए जीने का। जब हम कहते हैं जियो तो शान से, तो इसका अर्थ केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं होता, बल्कि ये गौरव होता है जो हमारे कर्मों से हमारे देश का नाम ऊंचा करे। हम अक्सर सोचते हैं कि देश के लिए जीना मतलब सिर्फ सीमा पर जाकर लड़ना है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश सेवा का दायरा बहुत व्यापक है। एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों को सही दिशा देता है, एक किसान जब खेतों में मेहनत करता है, एक डॉक्टर जब किसी की जान बचाता है, एक कलाकार जब अपनी कला से देश की संस्कृति को जीवित रखता है, तब वे सभी देश के लिए ही तो जी रहे होते हैं।

की आंखें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है। वो कहता है कि उसकी आंखें कमल नयन भगवान के दर्शन के बिना सूखी और उदास है। दिन रात वो इन्हीं दर्शन की प्रतीक्षा करता है, लेकिन जब दर्शन नहीं होते तो हृदय में विरह और पीड़ा बढ़ती है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ये एक अत्यंत प्रसिद्ध भक्ति पद है जिसे महान संत कवि सूरदास ने रचा है। ये पद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र तड़प और विरह की गहन भावना को व्यक्त करता है।

ईश्वर एक है पर उसे मानने के तरीके अलग अलग हैं। धर्म, जाति, भाषा, परंपरा भले अलग हो पर सभी मनुष्य का मूल तत्व एक ही है। भारी भिन्नताओं के कारण भेदभाव करना गलत है क्योंकि अंदर से तो हम सब एक समान हैं। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबन के न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। कबीर जी कहते हैं कुआ एक ही है लेकिन पानी भरने वाले लोग अनेक हैं। हर व्यक्ति अपनी अलग अलग बर्तन में पानी भरते हैं, इसलिए बर्तन अलग दिखते हैं परंतु पानी सब में एक जैसा होता है।

0: जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब मन विचलित हो जाए, तब स्मरण करो उस महादेव का जो शमशान में भी ध्यान मग्न रहते हैं। शिव शंकर हमें बताते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर की शांति में होती है। उनकी जटाओं से बहती गंगा की तरह अपने विचारों को भी निर्मल बनाओ।
1: मंगलम भगव

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना, वाचक स्वर संजीव मालवीय का था। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए सुनिए चिंतन।
1: मानव जीवन अनेक अनुभवों, भावनाओं, विचारों और घटनाओं का एक विशाल संगम है। इन विविधताओं के बीच संतुलन और सुंदरता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति संयोजन की कला को समझ लेता है। संयोजन का अर्थ केवल जोड़ना नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को सही ढंग से मिलाकर एक सुगठित, सार्थक और सफल जीवन का निर्माण करना है। जैसे संगीत में स्वर, ताल और लय के समुचित संयोजन से मधुर धुन बनती है, वैसे ही जीवन में विचारों, कर्मों, समय, संबंधों और मूल्यों का सही संयोजन व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाता है। संयोजन का वास्तविक अर्थ होता है विभिन्न तत्वों का ऐसा मेल जो किसी सकारात्मक परिणाम को जन्म दे। जीवन बहुआयामी है, इसमें परिवार, करियर, समाज, स्वास्थ्य, भावनाएं और लक्ष्य सब अपनी जगह महत्व रखते हैं। यदि इनमें असंतुलन हो जाए तो जीवन तनावपूर्ण और अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए जीवन में संयोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक पहलू की अधिकता दूसरे को प्रभावित

सकती है, क्योंकि संतुलन से ही मानसिक शांति उत्पन्न होती है और क्योंकि संयोजन ही जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। इसलिए संयोजन केवल कौशल नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का वो रूप है।

0: लक्ष्य पूरे होते हैं और न ही व्यक्तिगत जीवन में संतुष्टि मिलती है। समय का संयोजन व्यक्ति को सिखाता है कि काम और विश्वास में संतुलन बनाए रखे, आवश्यक और अनावश्यक कार्यों में अंतर करे, अपने दिन का एक सुनियोजित ढांचा बनाए। जो व्यक्ति समय का संयोजन सीख लेता है वो अवश्य ही सफलता को प्राप्त कर लेता है। संबंध जीवन को अर्थ देते हैं और इसलिए संयोजन यहाँ भी आवश्यक है। सम्मान, संवाद, भरोसा, समय और भावनाओं का संयोजन। यदि इनमें से कोई भी एक घटक कम या अधिक हो जाए तो संबंध प्रभावित होते हैं। जीवन की सुंदरता तभी बनी रहती है जब व्यक्ति सुनना और समझना सीख लेता है, क्षमा और धैर्य का प्रयोग करता है, सम्मान और प्रेम का संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार संबंधों में संयोजन सामाजिक जीवन को मजबूत और सौहार्दपूर्ण बनाता है। मनुष्य का मन सागर की तरंगों की तरह है। विचार और भावनाएं कभी शांत तो कभी उथल पुथल पैदा करती है। इन दोनों का संतुलन ही मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति का आधार है। यदि भावनाएं अधिक हावी हो तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं, यदि विचार बिना भावनाओं के हो तो मन कठोर हो जाता है। और इसीलिए संयोजन क्या सिखाता है? भावनाओं को समझना पर उनसे बह जाना नहीं, विचारों का विश्लेषण करना पर कठोरता को नहीं अपनाना, परिस्थितियों को तर्क और संवेदना दोनों ही ओर से देखना, यही संतुलन व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिपक्व बनाता है। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफलता को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन सच्ची सफलता वही है जो नैतिकता, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के संयोजन से प्राप्त हो। यदि सफलता मूल्यहीन हो तो वह क्षणिक है। संयोजन व्यक्ति को यह समझाता है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है पर साधन भी सीमित है, उपलब्धि अच्छी है पर व्यवहार उससे भी अधिक आवश्यक है, नैतिकता का पालन लंबे समय तक सम्मान दिलाता है और इस तरह संयोजन जीवन को केवल सफलता नहीं बल्कि सम्मान योग्य भी बनाता है। आज की तेज गति वाली दुनिया में संयोजन बनाए रखना पहले की तुलना में अधिक कठिन है। मोबाइल, सोशल मीडिया, बढ़ती व्यस्तताएं, काम का दबाव और बदलती जीवन शैली, ये सब ध्यान और संतुलन को कमजोर करते हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बीच संयोजन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बिना संयोजन के तनाव बढ़ता है, परिवार को समय नहीं मिल पाता, स्वास्थ्य प्रभावित होता है, मानसिक स्थिरता डगमगा जाती है। जीवन की इन चुनौतियों का सामना वही व्यक्ति कर सकता है जो हर क्षेत्र के बीच संतुलन बनाकर चलता है। संयोजन से मिलने वाले लाभ मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं, जीवन में सकारात्मकता और स्पष्टता लाते हैं, काम और संबंध दोनों में सफलता दिलाते हैं, स्वास्थ्य, दिनचर्या और लक्ष्य का संतुलन बनाए रखते हैं, समस्याओं को शांत मन से हल करने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। संयोजन व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों से मजबूत बनाता है। जीवन में संयोजन केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन को सुंदर, समृद्ध और सार्थक बनाने की कला है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग परिस्थितियों, भावनाओं, संबंधों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। संयोजन वह कौशल है जो व्यक्ति को विनम्र, विवेकशील और सफल बनाता है। जब जीवन के हर क्षेत्र में संयोजन मौजूद हो तब हर कदम सरल, हर संबंध मधुर और हर लक्ष्य प्राप्त करने के योग्य होता है। इसलिए जीवन में संयोजन ही सफलता, शांति और संतुलन का मूल आधार है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख सुधीर तैलंका था और वाचक स्वर मनीष कुमार सोनी का। श्रोताओं, आइए अब जानते हैं खेती की बातें। विषय है फसल चक्र। तुलसा दरगैया से जानते हैं आज के खेती की बातें।
2: किसान बहनों ने राम राम। आज हम बात करांगा फसल चक्र का बारा में। फसल चक्र काई हो ये तो सबसे पहले ही जाना। फसल चक्र एक ऐसी क्रिया है जिका म फसल नख एक क्रम सी बवान जिका सी मट्टी की उर्वरा शक्ति बनेल रहे। एक फसल उत्पादन का लेना उत्तरदायी प्रमुख कारक न फसल चक्र एक महत्वपूर्ण स्थान रख। एक अपनाणों को देश से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन न को उपयुक्त उपयोग करी न ओकासी हम ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन प्राप्त करी सकान। यानी कि किसी खेत में एक निश्चित समय में ओकी मृदा उर्वरता का बने न रखना का लेना उगाई जाने वाली फसल न का एक क्रम सी भगवान जिख हम फसल चक्र कवान। जसो कि एक वर्षीय फसल जैसे कि मक्का न गेहूं का हम साथ में लगाई सकान, द्विवर्षीय फसल ज्वार, बरसीम, धान न चना का लगाई सकान, एक अलावा खरीफ की फसल नम भी हम फसल चक्र अपनाई सकान, रबी की फसल नम फसल चक्र अपनाई सकान न जो अभी हमारा खेत नम जायद की फसल लगेल छे ओका में भी अपन फसल चक्र अपने न एक से ज्यादा फसल ने प्राप्त करी सकान। भाई बहनों फसल चक्र अपनाने से अपन का कई लाभ छे, जसो की फसल चक्र में फसल न कई क्रम सी बोवान जेका सी मट्टी की उर्वरा शक्ति बनेल रहे। फसल चक्र

0: का कारण निश्चित समय में होने वाले उत्पादन में वृद्धि हो, एकासी कृषि क्षेत्र में जो उपलब्ध संसाधन छे उको भी उपयोग हुई जाए, अलग अलग फसल को कार्यक्रम निश्चित होने से उनका लेने जो आवश्यक बीज छे खरपतवार नाशी छे उनको भी उचित समय का अनुसार हम प्रयोग करी सकान। फसल चक्र में गहरी न कम गहरी जड़ वाली फसल न का सम्मिलित होने का कारण जो जमीन की ऊपरी सतह छे न नीचे की सतह से पोषक तत्व न को फसल द्वारा उचित न तेजी से अवशोषण हुई जाए। एक फसल चक्र का अपनाने से मृदा क्षरण में कमी आवज, क्योंकि फसल चक्र आच्छादन फसल न हम सम्मिलित करान न किसान भाई न का साल भर काम करने का अवसर मिली जाए। किसान भाई ने उथली जड़ वाली फसल न का बाद गहरी जड़ वाली फसल न का उगानी चाहिए। ज्यादा खाद की आवश्यकता वाली फसल का बाद कम खाद की वाली फसल हमको उगानी चाहिए। अधिक पानी की आवश्यकता वाला फसल का बाद कम पानी की आवश्यकता वाला फसल न का उगानी चाहिए। फलीदार फसल न का साथ अफलीदार फसल को उगानी चाहिए। जैसे कि हमने अपना खेत में कदी फसल दाल वाली फसल न लगाई तो का साथ एक अनाज वाली फसल लगाई देवा तो दाल वाली फसल न में जो जीवाणु रहज वो जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने को काम करे तो उकासी हमारा पौधा ना का नाइट्रोजन मिल जाएगा और जो बिना दाल वाला पौधा छे वो कभी वो काम मई जाएगा। किसान भाइयों ने वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या का दबाव का कारण सघन कृषि कार्यक्रम को अपनाना बहुत जरूरी छे। सघन कृषि कार्यक्रम को अपनाने से फसल चक्र का बल मिलेगा। जसो की कभी हमारे किसान भाई एक वर्षीय फसल में एक धान वाली फसल लगे रहा तो एक दाल वाली फसल लगे ले तो इन्हें का आपस में मिले न लगानी चाहिए जिका से हमको फायदा रहेगा। एकासी खाद उर्वरक सिंचाई न खरपतवार नियंत्रण न पौधा न की सुरक्षा भी संभव हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में जमीन में पोषक तत्व न की पूर्ति न जो उर्वरक हम देवा साथ साथ विकसित कृषि तकनीक का अपनाने से हमको भरपूर उपज भी प्राप्त होगा। भाई बहनों फसल चक्र अपनाते समय हमको कुछ बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो फसल हम लगे रहा उकासी हमारा जमीन की उर्वरता बनेल रहे। प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्यादा लाभ प्राप्त हुए हमका जो भी जमीन छे की जानकारी किस्म की जानकारी एको सब भी बारे में सब पहले से मालूम होनी चाहिए कि जलवायु कसी छे हम जो फसल दुई साथ में लगाई रहा ओको उत्पादन पे हमको कितो खर्च आवेगा कितनी लागत लगेगा ना उत्पादन हमको कितो मिलेगा सिंचाई की अपना पास काई व्यवस्था छे ओकी पादप न की सुरक्षा की काई व्यवस्था छे ये सब कभी हमको बात में मालूम ही जाएगा। फसल चक्र अपना खेत में अगर उगई न ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करी सका। किसान भाई बहनों ने हमारा आपसे यज करना था।
1: खेती की बातें अभी आपने जानी तुलसा दरगैया से, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी से श्री रामचरित मानस तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनकर गरुड़ कृतकृत्य हो गए। अब उनके इस आश्रम से विदा होने की घड़ी आ पहुंची थी, किंतु विदा होने से पहले वे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते थे। ये 7 प्रश्न थे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत और असंत का भेद, सबसे महान पुण्य, सबसे भयंकर पाप और मानस रोग कौन से हैं? काकभुशुंडी ने उत्तर दिए, सबसे दुर्लभ मानव शरीर है और अभागे हैं वे जो इसे पाकर हरि भजन नहीं करते। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। संत मिलन के समान अन्य सुख नहीं है। संत परोपकार करते हुए दुख स्वीकार कर लेते हैं और असंत दूसरों को दुख देने में सुख का अनुभव करते हैं। वेदों ने अहिंसा को परम धर्म अर्थात सबसे महान पुण्य बताया है।

और पर निंदा को घोर पाप। सभी प्रकार के मानस रोगों की जड़ है मोह अथवा अज्ञान, क्योंकि इसी से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि ये आज सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे सुनहरे पल सदाबहार फिल्म संगीत। लोक संगीत में प्रीति भार्गव और साथियों को सुन सकते हैं आप सुबह 9:00। सुगम संगीत में नीलम साहनी को आप सुन सकते हैं सुबह 9:24 पर। और शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे आयुष मोरोणे का सितार पर बजाया हुआ राग ललित सुबह 9:30 पर।

जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्रों से करेंगे सुबह 10 बजे। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही सुबह 11 बजे।

शाम की सभाओं में कार्यक्रम युववाणी सुनना ना भूले, क्योंकि आज का क्रम रहेगा हेलो फ्रेंड्स, शाम 5 बजे।

विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे शाम 6 बजे। प्रीति जोशी लेकर आएगी इस कार्यक्रम को। विषय होगा क्रांतिकारी उपकरण ड्रोन तकनीक का कृषि में योगदान।

शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। विशेष आकर्षणों में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, परिरक्षित फल सब्जियों का उपयोग और टिकाऊपन, इस विषय पर डॉक्टर अंकित पांडे को, उद्यानिकी सहायक डॉक्टर अंकित पांडे से आप ये भेंट वार्ता सुनेंगे। वार्ताओं के क्रम में हम आपको सुनवाएंगे ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द फसलों में प्रमुख रोग और कीट, इनके समेकित प्रबंधन पर आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर बबली, पादप रोग विशेषज्ञ, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री मोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारं आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते ₹3 प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् ₹23 अपेक्षया ₹16 कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभार ग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किम राज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोक नगरे सिक्किम राज्यस्य राज्यत्व दिवस समारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओम प्रकाश माथुरः, सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रेंग सिंह तवांगः, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादयोऽपि उत्सवेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति। या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बित प्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति। एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। उतोवा अंकन योजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इजराइल लेबनान देशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिका देशस्य विदेश विभागः अवदत्। विदेश विभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृत वार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जून मासस्य द्वित्री दिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं 7 पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1 धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलं 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तम क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे।

0: मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani, the news.
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारी आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सिलसिलेवार जानकारी। सुनहरे पल सदाबहार फिल्म संगीत लेकर आएंगे सुबह 7:20 पर। लोक संगीत में प्रीति भार्गव और साथियों के स्वर में गूंजेंगी स्वर लहरियां सुबह 9:00। सुगम संगीत में नीलम साहनी को आप सुनेंगे सुबह 9:24 पर। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आयुष मोरुणे का सितार पर बजाया हुआ राग ललित आप सुन सकते हैं सुबह 9:30 पर।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों के अंतर्गत संग्रहालय से कार्यक्रम होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे लेकर आएंगे महिला कार्यक्रम। दिन में 1:45 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत।

युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5 बजे। शाम 6 बजे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत का प्रसारण किया जाएगा। प्रीति जोशी लेकर आएगी क्रांतिकारी उपकरण ड्रोन तकनीक का कृषि में योगदान, इस विषय पर जानकारी। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण समय शाम 7:20 पर। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम लेकर आएंगे रात 8:15 पर। और कुछ पुराने नगमों का कार्यक्रम चित्रगीत लेकर हाजिर होंगे रात 9:15 पर।

श्रोताओं, ये थी हमारे आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आपसे कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे का दूसरा पड़ाव। नीदरलैंड्स भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से हुए कई समझौते। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर गैंगटोक पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। भूशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया स्वागत, बोले ब्रिटेन से वापस लाएंगे मां बागदेवी की प्रतिमा। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी, मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद

0: नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। यहां एम्स्टर्डम में विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने उनका स्वागत किया। यहां के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन, नॉर्वे, इटली भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पांच देशों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। कल श्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ $5 अरब के निवेश पर सहमति बनी है।
1: और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम जाएंगे। गैंगटोक में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1975 में राजशाही खत्म होकर यह भारत का 22वां राज्य बना था। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भोजशाला को मां वाग देवी की आराधना स्थली माना है। डॉ. यादव ने कहा कि अब श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना का पूरा अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में रखी मां वाग देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे।
2: इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वागदेवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ। स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वागदेवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाएं। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करने और ग्रामीणों को मुफ्त पट्टे देने का अभियान चलाने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने गांवों में स्कूल, खेल मैदान और बेहतर सुविधाएं देकर शहरों की ओर पलायन रोकने पर जोर दिया। देवास के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े इस एकल सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता करेंगे। आयोग घटना से जुड़े 5 बिंदुओं की गहन जांच करेगा और 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा उद्यमियों अपर्णा और दिनेश से मुलाकात की। ये युवा उद्यमी रूडा नोट्स के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने कागज के उत्पाद गुणवत्ता, कार्यक्षमता और टिकाऊपन में बेहतरीन हैं। मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अच्छी स्टेशनरी हमेशा से उनके दिल के करीब रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल शाम भोपाल के रविन्द्र भवन में नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। गुड़ी पड़वा से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान के तहत कुएं, बावड़ियां, तालाबों को फिर से उपयोगी बनाने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को समर्थ नर्मदा अलंकरण से सम्मानित किया। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। पहले चरण में 19 से 22 मई के बीच ₹700 प्रति विषय शुल्क देकर उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी जा सकती है। दूसरे चरण में 26 से 29 मई के बीच गलती के सत्यापन

या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। हर चरण में सिर्फ एक आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को इसके लिए 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सब्जी में 54,000, मसालों में 56,000 और फलों में 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, आधुनिक तकनीक की मदद भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। वहीं 98% से अधिक घरों का निर्माण शुरू हो गया है। 9 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं और लोगों को सौंपे जा चुके हैं। मंडला जिले के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आज दूसरा और आखिरी दिन है। कल केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ज्वेल ओराम ने इस उत्सव का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि आयोजन जनजातीय संस्कृति परंपराओं को जीवित रखने का बड़ा मंच है। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21 लाख का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5 लाख के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। न्याय, सुशासन, कला, शौर्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश विदेश के लोग और संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। awards.mvsp.ujjain.com पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग एकेडमी की बॉक्सर माही लामा ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह पक्की कर ली है। एनआईएस पटियाला में हुए ट्रायल में उन्होंने 2 मुकाबले जीते। आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव-गांव जल संरक्षण के काम हो रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर ने पद्मश्री लोक कलाकार रमेश परमार और शांति परमार की कार्यशाला का भ्रमण किया। धार में 3 दिवसीय 11वें पद्मश्री फड़के संगीत समारोह का शुभारंभ कल शाम विक्रम ज्ञान मंदिर लालबाग परिसर में हुआ। पन्ना में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर के वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। खंडवा में शनिचरी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगर मालवा के सुसनेर में युवा संगम रोजगार मेले में 33 सेवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ। अशोकनगर में संपर्क अभियान के तहत बिजली संबंधी सेवाओं के लिए घर घर शिविर लगाए जा रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने 72 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

0: मालवा की शान।
1: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत,
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म के लिए सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है रविंद्र जैन ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मालवा की शान।
3: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: इंदिवर की बोल है, गिरफ्तार फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

सुनहरे पल सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। और अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने

0: इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह सेफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील।

0: के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रूपये महंगे, सीएनजी के दाम 2 रूपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, चश्मे का ये गीत अभी आपने सुना। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है। हर वर्ष 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है और यह दिवस भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में किए गए लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास के साथ साथ चिकित्सा, संचार और ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों में प्रकाश और प्रकाश आधारित तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना। और इसका महत्व है प्रकाश के महत्व में यानी लेजर के विशेष रूप से महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करना। और अब करते हैं रुख अगले गीत की तरफ। पास वो आने लगे जरा जरा, दिल पे होने लगा असर जरा जरा, नजरों से हुई बातें चुपके चुपके, इश्क भी चढ़ने लगा लेकिन जरा जरा। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये गीत है।

श्रोताओं, यूं तो लेज़र और लेज़र की बहुत सी तकनीकें आज विश्व में काम कर रही हैं, लेकिन इसी से जुड़ी है एक लेज़र असिस्टेड इन सीटू केरेटोमाइलियोसिस यानी कि लेसिक सर्जरी। एक सुरक्षित बाह्य रोगी लेज़र नेत्र शल्य चिकित्सा है लेसिक सर्जरी, जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य जैसी अपवर्तक त्रुटियों को भी ठीक करने के लिए कॉर्निया को स्थायी रूप से हमारा नया आकार देती है और हमारी आंखों को फिर से एक नया जीवन दे देती है। ये तो बात हुई कुछ तथ्यों की, अब चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और हमारा अगला गीत जो है वो है फिल्म मोहरा का। पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ें।

फिल्म संगीत की बात हो और एक मशहूर फिल्म निर्देशक सिनेमेटोग्राफर लॉरेंस डिसूजा की बात ना हो, जिन्होंने विशेष रूप से साजन फिल्म के माध्यम से कदम रखा, सुपरहिट रोमांटिक फिल्म के जरिए जिसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान मुख्य भूमिका में थे। लॉरेंस डिसूजा ये वो बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिनेमेटोग्राफर के रूप में की थी। बाद में फिल्म निर्देशन में आए और 1990 के दशक में उनकी रोमांटिक और ड्रामा फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया। आइए सुनते हैं साजन फिल्म का ये गीत अलका याग्निक की आवाज और नदीम श्रवण की संगीत के साथ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रीति भार्गव और मंडली के स्वर में कुछ निमाड़ी लोकगीत। आइए सुनें।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सबसे पहले शुभा जोशी को।

सूरदास द्वारा लिखी गई ये पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी नीलम साहनी की आवाज़ में। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में अगला ये लोक भजन, जिसे लिखा है बाल कवि बैरागी ने।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे आयुष मोरोने का सितार पर बजाया राग ललित। आइए सुनें।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आयुष मोरोनी का सितार पर बजाया गया राग ललित। तबले पर संगतकार थे उमेश बाकरे। शास्त्रीय संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया। और अब से कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी लेकर हाजिर होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों सूरज मानो आग उगल रहा है। जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दोपहर होते होते सड़कें सुनसान नजर आने लगती हैं। गर्म हवाओं और लू से बचने के लिए लोग चेहरों को सूती कपड़ों से ढककर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि पानी की व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खासकर जिले के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। प्रशासन क्राउलर बोरिंग मशीनों की मदद से नए पेयजल स्रोत तैयार कर रहा है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूरी हो चुकी 5 नल जल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। दूसरी ओर जिले में गेहूं खरीदी का काम भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। प्रशासन किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के साथ साथ मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी कर रहा है। इस साल रबी सीजन में गेहूं बेचने के लिए जिले से 4738 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिले के 5 प्रमुख उपार्जन केंद्रों पर अब तक 1346 किसानों से 60,727 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। भुगतान की करीब 90% राशि यानी 14,42,00,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में भी पहुंच चुके हैं। बड़वानी शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत खास अभियान शुरू किया है। नगर पालिका की IEC टीम घर घर पहुंचकर लोगों से स्वच्छता को लेकर फीडबैक ले रही है। इसी बीच जिले में लाडली उत्सव की खुशियां भी देखने को मिली। जिले के 1815 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में लाडली बेटियों और उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया। वहीं शिशु मृत्यु दर को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। कलेक्टर ज्योति सिंह ने मामलों की गहन समीक्षा करते हुए मृत शिशुओं के परिजनों से सीधे बातचीत की। उन्होंने इलाज के दौरान आई परेशानियों, स्वास्थ्य केंद्रों पर मिली सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। न्याय व्यवस्था को आसान और त्वरित बनाने की दिशा में भी जिले में बड़ा कदम देखने को मिला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में लंबित 384 मामलों में से 294 प्रकरणों का समाधान हुआ और करीब 4,82,00,000 रुपए से अधिक की राशि के अवार्ड पारित किए गए, जिससे 588 लोगों को राहत मिली। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला मुख्यालय स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 326 युवाओं ने पंजीयन कराया। विभिन्न कंपनियों ने 68 युवाओं का चयन किया। जिले के कलेक्टर ने जलगंगा संवर्धन अभियान और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फॉर्म पॉन्ड, अमृत सरोवर, डगविल और वाटरशेड डेवलपमेंट के कामों की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान

0: लापरवाही सामने आने पर तीन सब इंजीनियर्स का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिये गये। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान भी शुरू हो गया है। आयुष विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में रोज सुबह ऑनलाइन और ऑफलाइन योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के 27 केंद्रों पर लोग योग के जरिए खुद को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निवाली में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कृत्रिम हाथ पैर शिविर लगाया गया। शिविर में 28 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 13 लोगों को मौके पर कृत्रिम हाथ और पैर उपलब्ध कराए गए। जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल का दौरा भी चर्चा में रहा। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खास बात यह रही कि उन्होंने अधिकारियों के साथ कारों के लंबे काफिले की बजाय बस से यात्रा की। ग्राम ओझर में आयोजित रात्रि चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इन सब के बीच जिले की बेटी स्नेहा दाऊदी ने बड़वानी का नाम देशभर में रोशन कर दिया है। स्नेहा जिले की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है, जिनका चयन भारत के अंडर 18 टीम में हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर नई उपलब्धि हासिल की। अब वे जापान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। मकान सूचीकरण और गणना का काम तेजी से चल रहा है। कई प्रखंडकों और पर्यवेक्षकों ने समय सीमा में शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर मिसाल पेश की है, जिसके लिए शासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। बड़वानी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: बड़वानी जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था शिवपाल सिंह सिसोदिया का और वाचन किया था दीपा सिंह ने। ये आकाशवाणी है, कुछ ही पलों में हमारा
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए, हाजिर हैं हम लेकर आपके फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम MH Hotline।

0: एमएच हॉटलाइन लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो दोस्त मनीष कुमार सोनी, और लेते हैं आज का ये पहला कॉल। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते,
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर।
0: बहुत बहुत स्वागत है एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम में आपका। हमेशा आप हमारे कार्यक्रम सुनती हैं और आपके कॉल्स भी हम लेते हैं। आज बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: इसका सुना था देश प्रेमी का, खातून की खिदमत में सलाम अपुन का, तन दिन तंदाना तंदाना तंदाना।
0: क्या बात है, आपने मतलब गीत भी गुनगुना करके सुना दिया हमें, बहुत अच्छा लगा कि चलिए आप गीत सुनने के साथ साथ गीत गाते भी हैं और साथ साथ उनको आप एंजॉय भी करते हैं, उसका आप प्रसन्नता भी आप हासिल करते हैं। अच्छा ये बताइए अभी गर्मी के
1: दूसरा बताऊं सर, ये मिल जाए?
0: देखिए हम ढूंढ रहे हैं आपके गीत के लिए, बिल्कुल देश प्रेम फिल्म का गीत है या देश प्रेमी का है?
1: देश प्रेमी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अलावा और कौन सा गीत आप पसंद करेंगी सुनना?
1: इसके अलावा
0: चरस फिल्म का गीत है। ठीक है, तो फिलहाल तो जो आपने गीत की फरमाइश की थी कि खातून की खिदमत में, ये गीत बड़ा ही अलग अंदाज का है, किशोर कुमार ने इसको गाया था और
1: बजता है सर, कई सालों से बजा ही नहीं सर।
0: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो आज आपकी फरमाइश पर हम आपको आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं ये गीत। लीजिए सुनिए।
1: ओके सर, शुक्रिया।

0: पट्टी
1: क्या
0: तोए परेशान
1: हाथ छोड़।
0: आई मैंने हाथा पकड़े तो तूने दांत ऐसे नको ऐसे बता।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं और कहां से बात कर रही हैं आप?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: जीनत परवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें शॉर्टलाइन प्रोग्राम में। बताइए कौन सा गीत सबसे पहले आप आज सुनना चाहेंगी?
1: द बर्निंग ट्रेन का।
0: द बर्निंग ट्रेन का
1: जी। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के साथ हमारे से।
0: बिल्कुल, ये गाना आपको क्यों पसंद है ये बताइए।
1: जी अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है। और इस बार जो गर्मी बहुत ज़्यादा अपने चवाब पर है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी इस समय पड़ रही है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अख्तियार कर रही हैं इससे बचने के लिए?
1: घर पे ही रहते हैं।

0: और पानी खूब पीते हैं
1: जी,
0: और नारियल पानी या फिर जूस बना लेते हैं घर पे ही, और बच्चे को भी घर पे ही रखते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं धूप में।
1: बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हीट वेव लगातार चल रही है और हीट स्ट्रोक का खतरा भी बदस्तूर जारी है, और सरकार ने भी इसके लिए अलर्ट जारी किया है।
0: गई थी तो बस दो चार दिन में आ गई, उधर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो मैंने लापर दी इंदौर ही चलो वापस।
1: हाँ, लेकिन इंदौर की फिजा बहुत अलग है, गर्मी में भी कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा राहत मिलती है
0: जी।
1: चलिए बढ़िया है, आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और सुनिए आपकी फरमाइश का ये गीत जो आपने चुना है द बर्निंग ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में।
0: जी शुक्रिया।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, एम एच हॉटलाइन में आपका बहुत बहुत
1: हेलो।
0: स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और कहाँ कौन सी जगह से बात कर रहे हैं आप?
1: अरे श्रीमान जी, ये मान के चलिए कि आपसे बात करने के लिए मैं इतना बेताब हो रहा था कि
0: जी
1: तड़प जाता हूँ मछली की तरह।
0: बहुत बड़ी बात और बड़ी अतिशयोक्ति के साथ आपने शुरुआत की है, तो बताइए आपका शुभ नाम और आप किस स्थान से बात कर रहे हैं।
1: अभी सर आप होल्ड में लेंगे,
0: जी
1: गाना गाना बता दूं पहले,
0: पहले गाना बताइए।
1: क्योंकि गाना ढूंढने में आपको वो दिक्कत हो जाएगी।
0: बिल्कुल सही बात है, आप बताइए आप कौन सा गाना पसंद करेंगे।
1: वो भ्रष्टाचार का मिलेगा, मिथुन चक्रवर्ती और रेखा जी की फिल्म है और अलका याग्निक की आवाज है
0: जी
1: और गीत के बोल है ऊंट वाली रानी से जो यारी करो राजा।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: ऊंचा
0: बहुत ही चुन करके आप गीत लेकर के आते हैं। मैंने अक्सर देखा है जब कभी भी आपसे बात होती है तो आप बड़े ही चुन चुन करके फिल्में, मतलब फिल्मों में से आपकी जो दिलचस्पी काफी ज्यादा दिखाई देती है मुझे, और बड़ी चुन चुन करके आप फिल्में लेकर के आते हैं। भ्रष्टाचार है और भी पहले भी आपने कई फिल्मों का जिक्र किया था। अच्छा, इस समय बताइए कि आप कौन से स्थान से बात कर रहे हैं, आपका नाम आपने नहीं बताया।
1: आप सर जी अब वो तो पता बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो जान गए हैं, मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे जान गए हैं, आप हमारे दिल में बसे हुए हैं।
0: जी
1: मैं बहुत लंबा चौड़ा पता होता है मेरा,
0: जी
1: हिंदुस्तानी कलाकार
0: हिंदुस्तानी कलाकार। अच्छा
1: यूट्यूब में जो है, तो मैं हम दोनों आपकी भाभी जान वीडियो बनाते हैं, तो ये हो ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है, आपका नाम भी बड़ा सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका और उतना ही खूबसूरत आपके चॉइस होती है गीतों की।
1: और कहते हैं सर जी
0: जी
1: कि
0: हम बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हैं। आप रेडियो सुनते हैं, मतलब लगातार सुनते हैं?
1: सर जी ये मान के चलिए कि आज तक कोई आकाशवाणी चांद मोहम्मद से नहीं बचा सर जी।
0: क्या बात है,
1: कि जो छूट के गया हो। मैं बता दूं, भोपाल, विविध भारती, मुंबई, लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा, अयोध्यापुरी और इंदौर का तो मैं बिल्कुल दीवाना ही बन गया हूँ।
0: बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप रेडियो के दीवाने हैं। आज के दौर में भी जहां लोग YouTube, सोशल मीडिया और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं और आप रेडियो से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और प्रशंसनीय चीज़ है ये।
1: सर जी मैं बता दूं, 3 ठो ट्रांजिस्टर मेरे पास रखे हुए हैं फिलिप्स के, नंबर वन जो 45 वर्ष पुराने हैं, क्योंकि मैं रेडियो इस प्रकार से रखता हूँ कि एक बिगड़े तो दूसरा, दूसरा बिगड़े तो तीसरा।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, तो मैं ट्रांजिस्टर का बहुत ही शौकीन हूँ और गीतों का भी दीवाना हूँ सर जी। कोई अगर कंपटीशन करे
0: जी
1: तो जीत के नहीं जाएगा, ये दावा है कि किसने कब फिल्म बनाया, किसने गाया, कौन से गायक ने जी कब है, जो है जैसे सलमान खान की पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया, गोविंदा की इल्जाम
0: जी,
1: और अजय देवगन की फूल और कांटे, तो ऐसा कोई कंपटीशन करे तो जीत के नहीं जाएगा, ये दावा है मेरा चांद।
0: चलिए बढ़िया बढ़िया बात है और आपसे बात करके बहुत बड़ा अच्छा लगा और मतलब सुबह के दौर में आप कॉल करते हैं ये हमारे लिए बड़ी बात होती है। हमें अच्छा लगता है कि आप रेडियो से जुड़े हैं और आकाशवाणी को आप पसंद करते हैं आज भी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कॉल करने के लिए। आपका जो गीत है भ्रष्टाचार फिल्म का, ऊंट वाली से जो करे, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: तो मैंने गुनगुना लूं सर जी उसे?
0: जी आप थोड़ा सा गुनगुना लीजिए जल्दी से।
1: ऊंट वाली रानी से जो यारी करो राजा, तो ऊंचा करो घर का दरवाजा, तो ऊंचा करो घर का दरवाजा।
0: चलिए सुनिए सुनिए।

0: एमएच हॉटलाइन सजीव फोन इन कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। हमें फोन करने के लिए आप फोन नंबर नोट अवश्य करें। नंबर है हमारे 2710223 और 2710224। फोन नंबर दोबारा सुनिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का सिटी कोड है 0731 यानी 0731। और लेते हैं इस कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: एमएच हॉटलाइन सजीव फोन इन कार्यक्रम में दोबारा स्वागत है श्रोताओं, अंतराल के बाद। और लेते हैं अब अगला कॉल। हेलो हेलो हेलो हेलो
3: हेलो
0: जी हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: हेलो, आप राहुल जी बोल रहे हैं?
0: जी नहीं, मैं आपका रेडियो दोस्त मनीष सोनी बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
3: अन्य सुजामन नगर से अनिल भंडारी बोल रहा हूँ।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल भंडारी जी। और पहले सबसे पहले बताइए कि कौन सा गीत आज आप पसंद करेंगे?
3: आज हम फिल्म लव मैरिज का गाना सुनने जाएंगे।
0: लव मैरिज का? जी,
3: हम जानेंगे सरकार।
0: अच्छा, ये गीत आपने क्यों चुना, इसके पीछे कोई विशेष कारण?
3: इस गाने में खास बात ये है कि इस गाने में लता मंगेशकर ने
0: जी
3: दिल से गाए।
0: हाँ, आपकी आवाज मुझ तक कम पहुंच रही है थोड़ा सा, या तो आप फोन का वॉल्यूम बढ़ाएं।
3: लता की आवाज इसने बहुत मधुर तरह से गाया गाना है।
0: हम जाने गए सरकार, यही गीत है आपका?
3: हाँ, दिलीप के गहराई से गाना गाया।
0: जी जी जी,
3: माला सिन्हा देव आनंद कलाकार आमने सामने बैठे हुए हैं।
0: जी जी,
3: माला सिन्हा गीत गा रही है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अलावा अभी जो गर्मी का इतना जो दौर चल रहा है, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा हुआ है, तो इसको लेकर के आप अभी और क्या क्या राहत के उपाय कर रहे हैं अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए विशेष रूप से?
3: तीन बातें खास ध्यान रख रहे हैं हम, 12 से 4 घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं।
0: जी,
3: और जाते हैं तो बड़े कोई काम खास काम से निकलते हैं तो टोपी लेने छतरी या अन्य साधन करके हम बाहर निकलते हैं।
0: जी हाँ जी हाँ,
3: घर पे आते वो ठंडा पानी फ्रीज कर नहीं पीते हैं। तो यथासंभव गर्मी से राहत पाने के लिए कुदरती की हवा भी नहीं खाते हैं हम। उससे सब परत से दूर है अपने आप को।
0: अच्छा अच्छा,
3: स्वास्थ्य का लाभ हम उठा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बात है, आप स्वस्थ रहिए, बहुत अच्छी बात है ये, और शुभकामनाएं आपके स्वस्थता के लिए। और रेडियो सुनते हैं ये और भी अच्छी बात है हमारे लिए कि आप हमें कॉल करते हैं। आपका, आप सभी श्रोताओं का प्रेम हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आकाशवाणी आपके लिए ही है, और आपके फोन कॉल्स आते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है।
3: हम एक बात और बता जाएंगे मनीष जी।
0: जी,
3: कि हम 22 मई को 1926 को
0: जी
3: 70 साल हो जाएंगे आकाशवाणी सुनते हुए हमको।
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ,
3: 71।
0: हाँ, 71 करेक्ट।
3: हाँ, पूरा हो जाएगा अभी तक कार्यक्रम का।
0: हाँ हाँ,
3: सुनने का दिनों का बाकी है।
0: जी,
3: पुराने सुपर गीत 1960 से हम सुन रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया बात है, हम बिल्कुल जो है आकाशवाणी की सालगिरह को मनाएंगे और हमारे परिसर में ही बनाने वाले हैं। आप जो भी प्रोग्राम्स उस दिन आप सुनेंगे, आप बिल्कुल उसमें शामिल होइएगा। फोन इन सजीव फोन इन कार्यक्रम भी हम उस दिन करने वाले हैं, और हमें अच्छा लगेगा आप सभी श्रोता उसके उस प्रोग्राम में जुड़े और उस दिन को और भी बेहतर बनाए।
3: हम उसके लिए अग्रिम बधाई दे रहे हैं अपनी ओर से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ हजरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन के संगीत में, लता मंगेशकर की आवाज में, लव मैरिज फिल्म का ये गीत जो आपने चुना है।

0: हेलो,
1: जी हेलो, कौन बोल रही हैं आप और कौन से स्थान से बात कर रही हैं?
0: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम में। सबसे पहले बताइए कौन सा गीत आज आपने चुना है?
0: हाँ, मूवी का नाम है हेट स्टोरी 3।
1: हिट स्टोरी 3। अजी बताइए,
0: और गाने के बोल है वजा तुम हो, और गाया है अरमान मलिक ने। जी
1: अरमान मलिक ने, और ये गीत आपने क्यों चुना है? इसके पीछे भी क्या कोई वजह है विशेष?
0: वजह ये है कि मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग।
1: अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगता है।
0: जी,
1: जी, क्या करती हैं आप? मतलब हाउसवाइफ हैं या कहीं आप जॉब में हैं?
0: मैं तो जॉब भी करती हूँ और हाउस मेकर भी हूँ, दोनों ही करती हूँ।
1: क्या बात है, आपकी ये भूमिकाएं बड़ी बहुत ही बेहतरीन है कि
0: जी,
1: आप घर भी संभालती हैं और जॉब भी आप कर रही हैं कहीं।
0: वैसे आपको एक बात बताऊं, घर तो हर लड़की को संभालना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि
1: जी,
0: किसी की शादी हो जाए तो वही लेडीज या गर्ल्स संभाले, मतलब शादी से पहले भी हमें संभालना चाहिए घर तो।
1: जी, बिल्कुल बात है, क्योंकि अब ये जो ईश्वर प्रदत्त जो आदत है या ईश्वर प्रदत्त जो शक्ति है वो सिर्फ नारी को ही दी गई है, और एक नारी में ही ये शक्ति होती है और सामर्थ्य होता है कि वो घर को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाल सकती हैं।
0: जी, और इंदौर, मतलब मैं कॉल करती हूँ, कम करती हूँ क्योंकि आपके दो नंबर है ना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है
1: जी, हमारे दो
0: इसलिए।
1: नंबर हैं, लेकिन अब होता यह है कि आप जैसे बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं तो कई बार आपके नंबर हमें हमें कॉल्स मिल पाते हैं, कभी नहीं भी मिल पाते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, हम लगा मतलब जानबूझ कर लगाते ही नहीं है, मतलब
1: जी जी
0: ऐसा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, लगाया करिए और आप आकाशवाणी से जुड़िए रहिए। और कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनती हैं?
0: हाँ, मुझे तो फोन इन प्रोग्राम ही पसंद है, और वैसे अगर कहा जाए तो मेरा पसंदीदा आकाशवाणी भोपाल है,
1: जी,
0: और इंदौर वैसे पास नहीं है, बट आजकल इंदौर भी सुनने लगी हूँ कभी कभी।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने कॉल किया और आपने चुना ये हिट
0: और ये
1: स्टोरी।
0: सुनिए सुनिए
1: जी जी
0: सुनिए,
1: बोलिए बोलिए।
0: ये सॉन्ग डेडिकेट आपके लिए रहेगा, क्योंकि
1: अच्छा,
0: मैं आपको जानती नहीं हूँ बट फिर भी कर रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपसे।
1: जी,
0: और
1: बिल्कुल, धन्यवाद।
0: मेरी बहन नंदिनी के लिए भी रहेगा।
1: जी बिल्कुल, आपका पसंदीदा सॉन्ग जो मनोज मुंतशिर ने लिखा हुआ है और बामन का इसमें संगीत है
0: अरमान मलिक ने गाया है सर
1: और
0: ये
1: अरमान
0: सॉन्ग।
1: मलिक ने इसको गाया है, इस गीत को,
0: हाँ बस
1: फिल्म
0: बस
1: हिट
0: बस,
1: स्टोरी 3 से।
0: ओके।

0: हेलो
1: हाँ नमस्ते सर।
0: जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम उलझाम जिला सीहोर मतलब
0: सीहोर से बात कर रहे हैं। आपका नाम तो बताइए।
1: गेंदालाल परिया।
0: गेंदालाल परिहार जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर।
0: जी बताइए तो, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो गाना है मेरा नाम जोकर फिल्म,
0: मेरा नाम जोकर फिल्म।
1: जीना यहाँ मरना यहाँ।
0: अच्छा, और ये गीत आपने क्यों चुना?
1: अच्छा लगता है सुनने को। जी
0: अच्छा लगता है। और क्या करते हैं आप? मतलब किस काम में आप संलग्न रहते हैं? नौकरी करते हैं या बिजनेस करते
1: सर
0: हैं?
1: मेरा सिलाई काम है। सिलाई
0: सिलाई का काम है
1: का जी।
0: आपका। जो रेडियो सेट है आप थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि उसकी फीड हमें मिल रही है यहाँ
1: नहीं
0: तक।
1: नहीं सर रेडियो नहीं, मैं
0: अच्छा, रेडियो
1: इसी
0: नहीं
1: समय
0: है।
1: मोबाइल सुन रहा हूँ मैं।
0: हाँ, क्या बात है, आप न्यूज़ ऑन एयर पर सुन रहे हैं मेरे ख्याल से।
1: जी।
0: चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि आपने सोशल मीडिया के दौर में मोबाइल का आपने बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं और आकाशवाणी सुन रहे हैं।
1: मेरे को कम से कम 40 साल हो गए रेडियो सुनते हुए। जी
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात है ये तो। 40 साल से अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो आप हमारे नियमित श्रोता के रूप में विद्यमान हैं।
1: बिल्कुल सर, रेडियो बिना काम ही चलता है मेरा, दिन भर सुनते रहते हैं।
0: सही बात है, एक बार सोशल मीडिया में शायद नेटवर्क डाउन हो सकता है, लेकिन रेडियो कभी डाउन नहीं हो सकता। रेडियो हमेशा चलता रहेगा।
1: जी सर रेडियो चलते रहेंगे।
0: रेडियो सिर्फ मशीन नहीं है, ये प्यार का एक गुलदस्ता है जो हमेशा बना रहता है, खुशनुमा।
1: जी।
0: चलिए, बहुत ही सुंदर बात है। और आपका जो गीत है जीना यहाँ मरना यहाँ, जो आपने चुना है फिल्म मेरा नाम जोकर से, मुकेश की आवाज़ है और शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।
1: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मालवा हाउस इंदौर से आप सुन रहे हैं एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम। हेलो हेलो हेलो,
1: नमस्कार सर जी।
0: जी नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: बाग जिला धार
0: से बात कर रहे हैं।
1: हाँ सर जी।
0: जी जी, आपका नाम तो बताइए।
1: नाम तो बता दूंगा सर, अनोखे सिंह।
0: अनोखे सिंह जी, क्या बात है, आपके नियमित कॉल्स में हमें मिलते हैं और चलिए अच्छी बात है। सबसे पहले बताइए कौन सा गीत आप पसंद करेंगे सुनना?
1: हमको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देना है सनी जयंती की, आज बड़ी अमावस है सर जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और इस जी जी
1: देशवासियों को
0: जी बिल्कुल।
1: फिल्म है क्रांति,
0: फिल्म है क्रांति,
1: दुर्गा है मेरी माँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: और ये सभी हमारे देशवासियों को समर्पित है, विशेषकर धार उत्सव समिति के लिए।
0: जी जी जी जी, और इसके अलावा इस समय आप क्या करते हैं और आपके बारे में कुछ और भी बताइए, हमारे श्रोताओं के साथ में शेयर कीजिए।
1: सर जी मानसिक विकलांग हूँ मैं तो सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: और पागलों की बात कौन जानता और कौन समझता, कोई नहीं।
0: नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मानसिक रूप से विक्षिप्तता या इस तरीके से होना, ये कोई एक सामान्य बीमारी का भाग हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है।
1: सामान्य बीमारी नहीं है
0: जी,
1: ये तो आम जन और सरकार ने हमको मानसिक विकलांग घोषित कर रखा।
0: देखिए वो एक अलग बातें हैं, लेकिन आज आप बताइए कि इस गर्मी के दौर में आपने और कौन कौन सी चीजों को अपनाया है जिससे आप गर्मी के इस कोप से बच सके?
1: हम तो सुबह से दूध और दलिया लेते हैं सर जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: से शाम 4 बजे तक।
0: जी जी, बहुत ही सुंदर बात है।
1: गुरु आश्रम में जाते हैं
0: जी,
1: तो वहाँ बिल पत्र पे जो बिल्ला लगता है सर जी, बिल्ला।
0: जी हाँ जी हाँ,
1: उसका जूस पिलाते हमको हमारे गुरु जी सर।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: और आज यानी
0: हाँ,
1: हमारा धाम गंगा को ही है, वहाँ शनि जयंती के उपलक्ष्य में भंडारा भी है
0: जी,
1: और नवग्रह शनि मंदिर सरदारपुर में भी आज उत्सव है सर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप उत्सवों का आनंद उठाइए और आनंद उठाइए इस गीत का।
1: जय राम जी की आपको बोलना पड़ेगा सर जी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, जय राम जी की आपको भी बहुत बहुत, और बहुत आप हमें कॉल करते रहें और हमसे जुड़े रहें। मनोज कुमार कि लिखे हुए गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है और
1: पुनः सुनाना सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, महेंद्र कपूर की आवाजें हैं, पुरुषोत्तम की आवाजें हैं।
1: हाँ हाँ सर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुलाबचंद नानी रह रहा हूँ, रुस्तम के बगीचे से।
0: अच्छा, आप रुस्तम के बगीचे इंदौर से बात कर रहे हैं। गुलाबचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम में।
1: थैंक यू सर।
0: बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं सुनना चाहता हूँ दिल है बेताब मूवी का गाना है।
0: दिल है बेताब,
1: हाँ
0: ये मेरे ख्याल से अमृता सिंह

0: की एक मूवी थी जिसमें दिल है बेताब में काम किया है उन्होंने।
1: गाना ये है वो, क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलवर आने वाले हैं।
0: बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है, ये बहुत ही पॉपुलर गीत है, बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। उदित नारायण की आवाज़ है, रानी
1: जी
0: मलिक
1: हाँ जी
0: का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में है।
1: जी सर जी
0: जी सुनवाते हैं आपको।

0: तो श्रोताओं, ये था आज का MH हॉटलाइन सजीव फोन इन कार्यक्रम। और इसके साथ साथ हम आपको जानकारी दे दें कि अब से कुछ ही पलों के बाद यानी 11 बजे हेलो विविध भारती लाइव फोन इन प्रोग्राम आप हमारे आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती सेवा पर भी सुन सकते हैं और कॉल्स कर सकते हैं। हमारे नंबर नोट अवश्य करें, नंबर है हमारे 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। और अब दीजिए इजाजत, मनीष कुमार सोनी को नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: MH हॉटलाइन का प्रसारण अभी आपने आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से सुना और अब से कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
2: यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दिन के 11 बजे हैं। आप सुनिए फोन इन कार्यक्रम, बात आपकी गीत हमारे।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हम बात करेंगे जिंदगी की किताब के उन पन्नों की जो भरे हुए हैं जज्बातों के रंग से, जिनमें शामिल होता है प्यार का रंग, मस्ती का रंग, खुशी का रंग, नाराजगी, दुख, दर्द, दूरी और दोस्ती का रंग भी। और इन रंगों पर कहीं गाढ़ी स्याही ढुलक जाती है तो कभी रोशनी का रंग बिखरता है, मगर हम नहीं रुकते और ना ही जिंदगी रुकती है। अपनी रफ्तार से जीने के लिए चलती चली जाती है, चलती चली जाती है और हम भी चलते रहते हैं उसी के साथ। तो आज इन रंगों के एहसास को आप बांटेंगे, बयां करेंगे मेरे साथ। मैं हूं आकांक्षा, आपके साथ कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। तो श्रोताओं, देर किस बात की है, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और साझा कीजिए इन एहसासों से जुड़े कुछ किस्सों को, बातों को हमारे साथ। हमारा फ़ोन नंबर है 2660902 और भोपाल का STD कोड है 0755। तो आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता कॉलर से। हेलो जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
4: जी जी बिल्कुल, बात आपकी गीत हमारी।
3: जी तो आज हमारा टॉपिक है कि हमारी जिंदगी की जो किताब होती है वो कई तरह के रंगों से भरी होती है, उसके हर पन्ने पे एक अलग ही रंग होता है, जिसमें प्यार का रंग होता है, मस्ती का रंग होता है, खुशी, दुख, दर्द, जुनून, दोस्ती का रंग भी उसमें शामिल होता है। तो हम ये चाहते हैं कि आज आप अपने जज्बात के इनमें से किसी भी रंग के एक एहसास के साथ जुड़ा अगर कोई आपका किस्सा है तो वो हमसे साझा कीजिए। पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं?
4: गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, दीदी मनोज नामदेव।
3: मनोज जी नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
4: बस दीदी बढ़िया है, आपका कार्यक्रम रेगुलर सुनते रहते हैं। बिल्कुल दीदी, और कहें कि आकाशवाणी भोपाल से तो हमारे श्रोता अपार प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बताया अब कैसे बता दूं मैं आपको।
3: वो हम आपके जज्बात समझते हैं, इसीलिए तो आज का विषय यही है कि अपने जज्बात के रंग का कोई उससे जुड़ा हुआ किस्सा या उससे जुड़ी हुई कोई बात हमसे शेयर कीजिए।
4: बिल्कुल दीदी, आपको मैं छोटा सा वाक्य बता दूं।
3: जी
4: कि दीदी, जब मैं कहें कि छोटा था
3: जी,
4: तो इतना समझदार नहीं था, लेकिन मैं अपने जो पापा जी के साथ बैठा करता था, मेरे पापा जी क्या करते हैं, सिलाई वाली जो मशीन चलाते हैं दीदी
3: जी,
4: तो आपका

0: रेडियो स्टेशन है वो सुनते रहते थे। तो पहले भोपाल भी आता था और हमारे पास में शिवपुरी है वो भी आता था और हमारे पास में झांसी भी है वो भी सुनते थे। तो मैं सुनता रहा, बहुत दिन सुनता रहा, पर मेरे मन में एक कहें कि एक जिज्ञासा जगी कि इसमें ऐसा क्या होता है कि इसमें बढ़िया तो समय समय पर गीत आते हैं और समय समय पर इसमें कहीं की समाचार भी आते हैं और आज दिख रहे हैं तो आज इसमें मैच भी आ रहा है। तो मैं सोचता रहा। अब मेरे मन में एक जुनून सा पैदा, उस दिन से ऐसा हुआ कि मैंने अब मन में ठान ली या आपका क्या कहें कि कसम खा ली, कुछ भी मान लो, तो उस दिन से जुनून ऐसा पैदा हो गया, ऐसा जुनून सवार हो गया मेरे ऊपर कि जब तक मैं सुबह से शाम तक रेडियो अगर मैं अपने शॉप पर हूँ तो सुनता ही हूँ, अगर शॉप पर भी नहीं हूँ तो कहीं भी हूँ रेडियो बिना मेरे को चैन नहीं पड़ता।
1: बहुत अच्छी बात है। और आपको एक बात बताएं कि ये जो जुनून वाला एहसास है ये एक ख्वाहिश होती है कि आपने ये बना लिया है कि हाँ मुझे रेडियो सुनना है, और ये ख्वाहिश, ये जुनून बारिश की उन बूंदों की तरह होती है मनोज जी, कि जिसे पाने की चाहत में हम तो भीग ही जाते हैं और वो जो प्यास है वो बरकरार रहती है, या ये कहें कि बढ़ जाती है। अब आपको भी वो प्यास रहती होगी कि अब हमें सुनना है कि अब हमारे रेडियो में कौन सा प्रोग्राम आने वाला है।
0: बिल्कुल दीदी और बताना चाहती कि अगर मैं रेडियो से नहीं जुड़ता तो काश अभी जहाँ हूँ वहाँ मैं नहीं पहुँच पाता। आधे से ज्यादा तो भूमिका रेडियो की है कि आज मैं यहाँ तक हूँ। कहीं की इतने श्रोता है मेरे, इतने श्रोता है कि अगर मैं चाहकर भी श्रोताओं से अगर मिलता या उनसे बात करता तो मेरा कहीं की जिंदगी निकल जाती, लेकिन श्रोताओं से कभी मुलाकात या बातचीत नहीं हो पाती। इसलिए मेरी जिंदगी में रेडियो का इतना महत्व है कि अगर मैं अपने मुंह से बताऊं तो सब कम पड़ जाएंगे।
1: वो हमें आपकी बातों से समझ में आ रहा है मनोज जी, आपको बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है रेडियो से, और हम चाहते हैं कि आपका ये प्रेम हमेशा बरकरार रहे। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
0: अगर आपका आकाशवाणी भोपाल की जितनी भी अनाउंसर हैं, अगर सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं को, तो आखिरी सांस तक रेडियो में छोड़ूंगा ही नहीं।
1: बिल्कुल, हम चाहेंगे भी नहीं कि आप छोड़ें हमारा साथ, लेकिन आशीर्वाद हमारा नहीं ईश्वर का रहता है, हमारा तो साथ है आपके साथ,
0: बिल्कुल
1: ना, जो हमेशा बना रहेगा। मनोज जी, आपने कार्यक्रम में फोन किया, इतनी अच्छी बात हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीदी, आपको भी, सभी टीम को
1: जी।

0: कार्यक्रम
1: हेलो,
0: बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, परिचय दीजिए अपना।
1: दीदी मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ, सारनाथ वाराणसी से।
0: बाबू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद दीदी आपको।
0: जी, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बातों के रंग की। हमारे जीवन के जो जज्बात हैं, जो एहसास हैं, कभी प्यार का, कभी खुशी का, कभी हमें दुख होता है, कभी दर्द होता है। तो आज हम जानना चाहते हैं आपके एहसासों से जुड़ा कोई वाक्या, कोई किस्सा या कोई बात जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं।
1: ये देखिए, अगर जीवन में जज्बात नहीं है तो
0: जी
1: जीवन का मतलब भी नहीं रहेगा। जज्बात तो होना चाहिए किसी बात का भी। तो
0: जी बिल्कुल सही बात है ये।
1: जज्बातों से जीवन में एक ऊर्जा मिलती है, तो
0: जी
1: हमें जज्बात को रखना चाहिए। और रह गए मुझे जज्बात जो है अपने देशभक्ति के लिए, ईमानदारी के लिए है। मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूँ दीदी, मैं दुकानदार हूँ,
0: जी
1: तो मुझे ये जज्बात है ईमानदारी का।
0: बहुत बढ़िया।
1: हाँ,
0: ये
1: मैं अपने ग्राहकों से हमेशा ईमानदारी से बात करता हूँ, उनके प्रति मैं बहुत मतलब प्रेम रखता हूँ, चाहे वो कुछ भी रहे, मतलब मैं उनसे प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मेरे भगवान हैं।
0: बिल्कुल
1: तो ये मेरा जज्बात है कि मैं उनसे प्रेम रखता हूँ और इसी बात से वो मुझसे खुश भी रहते हैं।
0: जी, तो यहाँ ये खुशी का एहसास है आपका, आपकी ईमानदारी में छुपा हुआ।
1: जी, कभी मैं बार्गेनिंग किसी बात में नहीं करता हूँ। सामान मांगा तो बोल देता हूँ भाई मांगा है,
0: जी
1: अब आपकी इच्छा लो ना लो, लेकिन मैं कभी बार्गेनिंग नहीं करता हूँ कि
0: जी
1: कुछ ही कम दे दूँ, कुछ कुछ किसी को बार्गेनिंग कर दूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ईमानदारी मेरा जज्बात है।
0: जी और इस ईमानदारी के जज्बात से आपको खुशी मिलती है।
1: जी दीदी, बहुत खुश रहता हूँ, मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ता है, मैं ईमानदार हूँ
0: जी
1: तो मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ता कि मैंने कल क्या किया था क्या नहीं किया था।
0: जी तो ये जो खुशी है ना बाबू यादव जी, ये बहुत बड़ा रंग है, बहुत महत्वपूर्ण रंग है हमारे जीवन का।
1: जी जी बिल्कुल, मैं उसी उसी तो नाम से जाना जाता हूँ, वो
0: जी
1: अगला ईमानदार है।
0: और ये ऐसा जज्बात है, इसकी तलाश में सारी दुनिया लगी हुई है, और अगर
1: जी जी
0: इसको हम
1: बिल्कुल
0: सही ढंग से ढूंढेंगे ना, तो ये हमें हर कहीं मिल जाएगी।
1: जी,
0: बस हमारे नज़रिए का फर्क होता है और उस पर निर्भर
1: हाँ हाँ
0: करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, सबका अपना अपना नजरिया है।
0: जी तो आपने अपना ये ईमानदारी वाला एहसास हमसे बांटा, इसके लिए बाबू यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जय बजरंग रेडियो सोता था बस ट्रेन बंडा पे लेके चले मतलब कुछ चाय वाले बोल रहा दीदी काफी पी लो।
0: आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉफ़ी ऑफर की। जी आप अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए।
1: लक्ष्मण रेखवारा, हमने कही है बेटी दी है काफी पीते हैं आप तो चाय पी लो।
0: हम चाय कॉफ़ी सब पी लेंगे, आप इतने प्रेम से हमें पूछ रहे हैं तो हम भला ना कैसे कहेंगे लक्ष्मण जी।
1: हाँ
0: जी तो आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और
1: हाँ
0: इसका
1: जी
0: विषय हम आपको बता देते हैं। आज इस कार्यक्रम में बिखरे हैं जज्बात के रंग, हमारे जीवन से जुड़े हर एक जज्बात का एहसास, जो प्यार का हो सकता है, खुशी, दर्द, आपको कभी किसी ने तकलीफ़ दी हो तो उससे जुड़ा हम कोई किस्सा या कोई बात अगर आप हमसे बताना चाहते हैं उसे साझा कीजिए।
1: हाँ ये तो सही है। क्या हमारा छोटा भाई है जो मंजिला भाई वो बिलर गया था थोड़ा, अब तो सही हो गया भगवान जी, बहुत परेशानी गई है। हाँ तो उसमें दिक्कत भाई है बहुत ज़्यादा।
0: हाँ तो आप उस समय तकलीफ में रहे होंगे।
1: हाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ में 1-2 साल,
0: जी
1: अब तो सही लेन पे आ गया है। एक दुकान बंद भी करना पड़ी थी उसके पीछे ना,
0: अच्छा,
1: 3 दुकानें थी तो ये अब 2 बच्ची हैं।
0: तो जब परिवार को देखना होता है उसमें कहीं कुछ परेशानी होती है तो अपने ही तो साथ देते हैं लक्ष्मण जी,
1: हाँ ये तो सही है
0: है
1: दीदी।
0: ना। और आप लोगों की लगन और मेहनत रही होगी उनको ठीक करने में कि वो आज ठीक हो गए हैं,
1: हाँ
0: है ना। तो
1: हाँ
0: ये
1: दीदी,
0: देखिए, जीवन है तो सुख दुख सब कुछ लगा हुआ रहता है हमारे
1: हाँ
0: साथ।
1: सुख दुख आया जाएगा और जाएगा, चलता रहता है।
0: जी क्योंकि
1: अब
0: ये
1: पहले
0: जो
1: बहुत हमने भी क्या है बहुत तकलीफ में रहे, पटी पेंट पे रही, सब पे रही, दूसरे के काम भी किया, मगर अब भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया है। वो
0: बहुत
1: अच्छा करोगे काम तो भगवान भी देगा साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जीवन की जो किताब है ना उसमें अगर एक तरफ खुशी रहती है तो कहीं ना कहीं दर्द तकलीफ से भी हमारा सामना होता ही है, और उस ये पल हमें मिलते हैं कि हम कैसे उससे बाहर निकलते हैं, कैसे उनको संभाल पाते हैं हम। जी और आपने संभाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमसे इतनी बड़ी बात साझा की उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण
1: ठीक है
0: जी।
1: दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। क्या हम जान सकते हैं हमारी बात किससे हो रही है?
1: बिल्कुल जान सकते हैं। मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ।
0: जी, मैं हूं आकांक्षा
1: अच्छा, आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया बढ़िया।
0: जी।
1: आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बातों के एहसास की। हमारे जीवन में जो भी जज्बात हैं, प्यार का, दुख दर्द, खुशी, दोस्ती, जुनून, इन सब से जुड़ा अगर आपका कोई किस्सा है या कोई बात आप हमसे बताना चाहते हैं, वो हमसे साझा कीजिए।
1: तो बताइए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बोलने की। क्या बताया आपने? जी
0: देखिए, हमारा जो जीवन है
1: जी
0: उसमें कई तरह के रंग होते हैं। रंग मतलब
1: जी
0: एहसासों के रंग, जिसमें शामिल होते हैं प्यार का रंग, खुशी का रंग। कई बार
1: जी
0: हम पहली बार कुछ काम करते हैं या कोई हमें ऐसा मिल जाता है जिससे मिलके हमें बहुत खुशी होती है, तो वो हो गया खुशी का रंग। तो
1: जी
0: ऐसा कोई रंग आप साझा करना चाहते हैं हमारे साथ तो वो बताइए।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत बढ़िया आपने विषय रखा है। और जो विषय रखा है ये बिल्कुल हमारे आपसे ही लिमिटेड है, जो है जैसे हमारा आपका आकाशवाणी का नाता है। हम आपको नहीं जानते थे, आप हमको भी नहीं जानते थे, तो
0: जी
1: एक आकाशवाणी के माध्यम से जो है हम आपको जानते हैं और जितने श्रोता हैं उनको भी हम जानते हैं। बहुत अच्छा लगता है।
0: जी
1: और ये जान परिचय जो है केवल हमारी आकाशवाणी की ही देन है और उसी आकाशवाणी की वजह से ही हम सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं।
0: ये तो हो गई आकाशवाणी की बात कि आकाशवाणी से आप जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे आपको प्यार है, उससे बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनते हैं उसके ज़रिए। लेकिन हम जानना चाहते हैं आपके जीवन के एहसास का रंग। कभी
1: अच्छा
0: कोई ऐसी खुशी आपको मिली है या कभी किसी ने ऐसा चोट पहुंचाई है कि आप अंदर से टूट गए हों, आपको अच्छा नहीं लगा हो, तकलीफ है? क्योंकि जीवन में तो ये सब लगा हुआ रहता है ना।
1: हाँ हाँ जी, बात सही है बिल्कुल। बिल्कुल मुझे जो खुशी मिली है जीवन में वो शायद आप कहेंगे तो वो रेडियो से ही मिली है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और मुझे जितनी खुशी और जितना आनंद रेडियो सुन के आता है वो शायद कहीं नहीं आता है।
0: जी, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे श्रोता ऐसे हैं।
1: जी जी जी जी बिल्कुल। मुझे बहुत आनंद आता है रेडियो के माध्यम से। जब मैं रेडियो सुनता हूँ, रेडियो के बारे में जब सोचता हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद मुझे रेडियो से ही मिलता है।
0: जी, फूलचंद पाल जी, देखिए,
1: जी
0: ये जो खुशी हमें मिलती है ना, तो ये ऐसी खुशी होती है मानो जिसे हम ढूंढ रहे थे वो यही है।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: वैसे भी ज़िंदगी में आवाज़ देने वाले हमें बहुत मिल जाते हैं, मगर हम
1: जी
0: ठहरते वहीं हैं जहाँ अपनेपन और खुशी का एहसास होता है ना।
1: क्या बात है,
0: और
1: बहुत अच्छी बात।
0: मुझे आपसे बात करके यही लग रहा है कि आपकी वो खुशी, आपका वो एहसास आकाशवाणी ही है।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी
1: मैं बता दूं, मैं आकाशवाणी से लगभग लगभग जो है बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरी मन में जो खुशी है, मेरे मन में जो आनंद है वो आज भी निकम हुआ है, बहुत ज्यादा है।
0: और हम चाहेंगे ये कभी कम ना हो। आपका ये आनंद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप हमसे जुड़े, हमसे इतनी अच्छी बात की, अपना एहसास हमसे साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मनोज विश्वकर्मा, ग्राम पनारी, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: मनोज विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बात के खूबसूरत एहसास की, वो जज्बात जिनसे हमारी जीवन की किताब का हर एक पन्ना भरा हुआ है। जी, उसमें आप जानते ही हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी दुख होता है, तकलीफ होती है, कभी उसमें दोस्ती का रंग शामिल होता है। तो हम चाहते हैं कि आपका कोई एक ऐसा एहसास या कोई ऐसी बात हमसे साझा कीजिए जो आपके मन को छू गई हो, या आपको कभी कुछ ठीक ना लगा हो, किसी भी तरह की बात।
1: मुझे तो ऐसा है, जैसे कहीं जब कहीं बाहर जाते हैं या कहीं से किसी से मिलते हैं अजनबी व्यक्ति से
0: जी,
1: तो कभी कभार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने से इतना खास या ऐसे जुड़ जाता है
0: जी,
1: जैसा अपन कभी सोचते भी नहीं थे कि इस प्रकार का व्यक्ति मिलेगा कभी।
0: जी
1: जी,
0: तो आपसे कभी ऐसे किसी व्यक्ति की मुलाकात हुई है?
1: हाँ, ऐसा हमारे एक मित्र है बिहार का, एक तो उससे हमारी ऐसी पहली दफा मुलाकात हुई थी और एकदम मुझे इतना वो हमारा करीबी बन गया
0: जी,
1: अपने परिवार जैसा हो गया।
0: मतलब वो अजनबी थे और फिर आपके करीबी हो गए, तो इस एहसास से आपको दोस्ती का रंग मिला, खुशी मिली। तो हालांकि वो आपसे बहुत दूर हैं, बिहार के आपके दोस्त हैं, तो हैं तो दूरी बनी हुई है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार भी है।
1: बिल्कुल
0: जी, आपने हमसे इतना अच्छा एहसास साझा किया, उसके लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, मेरी बात कैसे हुई मैडम?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ।
1: जी, आकांक्षा
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो, नमस्कार।
1: जी नमस्कार। जी
0: नमस्कार, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
1: जी जी जी जी
0: हम जानना चाहेंगे हमारी बात किससे हो रही है।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राकेश जी, शिमला से
1: जी
0: बहुत
1: जी जी
0: दूर से आपने हमें फोन लगाया है।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: कैसे हैं आप?
1: जी। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के, क्योंकि जो मुझे सबसे ज्यादा आकाशवाणी भोपाल का मुझे फोन करके सुने उतना पसंद नहीं था जितना ये जो है बात आपकी गीत हमारे। ये पसंद क्यों होता है, इस पे जो है अपने विचार रखने का अधिक अवसर मिल जाता है, तो इस पे मैं ज्यादा जुड़ता हूँ इस प्रोग्राम में।
0: बहुत बढ़िया। तो आज हमारा जो विषय है वो भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज कार्यक्रम में बिखरे हैं जज्बातों के रंग।
1: जी
0: जज्बात जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तो आप अपना कोई भी एक एहसास हमसे साझा कर सकते हैं, उस बारे में बता सकते हैं।
1: जी जज्बातों के जी जी जी बिल्कुल।
0: जी
1: तो मैं सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जज्बातों के जो रंग होते हैं
0: जी
1: इस, क्योंकि मैं अपनी बात कहूँ तो अपने जीवन का मेरा एहसास ये है कि मैंने कभी अपने लाइफ में ये नहीं सोचा कि कभी जज्बातों पे मैंने अपने हावी अपने पर हावी नहीं बन गया। कैसे हावी नहीं बन गया कि जैसे कि कई लोग मेरे से मित्र मिले हैं,
0: जी
1: तो उनने मेरे को ऐसी बात कही जो वो बात टूटने वाली थी,
0: हाँ, मतलब आपको तकलीफ पहुंचाई बातों से।
1: मतलब कैसी तकलीफ। उनका कहने का मतलब था कि भाई अभी तो शायद आपके जो है माता पिता है अभी आपको सब आपके कर लेंगे कोई सेवा पानी, जब माता पिता नहीं होगी फिर क्या होगा, तो ऐसा क्या बोला गया था। तो मैं सुनता रहा
0: जी
1: इस चीज को।
0: जी
1: तो मैंने इस चीज को गौर से सुना, तो मैंने क्या किया कि मैं इनको जो है बोलने दो, क्योंकि बोलने वाले तो बोलेंगे, हमें अपने लक्ष्य पे खड़े उतरना चाहिए, क्योंकि बोलने वाले क्या नहीं बोलेगी। तो मैं इस चीज पे कभी तो मैंने इस चीज को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलत बात को
1: गलत
0: अगर
1: बात
0: हम अपने
1: को
0: ऊपर हावी होने देंगे तो नुकसान हमारा ही होता है।
1: क्योंकि ऐसा क्यों बोलते लोग, देखो अब देखो लोग अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं किसी की, तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए, कि ऐसा बोलना चाहिए कि चलो हम बाकी कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे, हम कुछ आपके लिए कर सके, तो आपको इच्छा

0: भी जानने की कि ऐसा क्या हुआ आपका जो ऐसा लोग बोल रहे हैं।
1: अगर आप बताना चाहते हैं तो बताइए।
0: तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ। तो बचपन से ब्लाइंड हूँ तो लोग जब मैं जब कोई भी आते थे अरे पूछते थे कि भाई इनको कब से दिखाई देता, मैं कहा बचपन से। तो लोग बोलते हे भगवान ऐसा क्यों किया, और बाकी तो चलो ठीक है अभी तो आप लोग करेंगे तो फिर बाद में क्या होगा। तो मैंने सोचा कि बाद में जो होगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन हम बाद के लिए हम अपने आज आज को जीना है, ना कि कल की कल के बारे में सोचते कि कल क्या होगा, कल जो भी होगा तो वो देखा जाएगा। लेकिन अभी हम जो आज में जी रहे हैं तो हम बड़ी खुशी से जी रहा हूँ मैं, बढ़िया से। आज आकाशवाणी केंद्र से आपके माध्यम से लोगों से दोस्तों से बात हो रही है और अपने विचार बांटने का अवसर हमें मिल रहा है।
1: राकेश जी आपकी ये बहुत अच्छी सोच है कि हमें आज में जीना है, आगे जो होगा देखी जाएगी।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी को बोलता हूँ जितने मेरे ब्लाइंड साथी है, कई बार आकाशवाणी लखनऊ या भोपाल में कहते रहते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं घर पे पड़ा रहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आप ऐसा मत बोलो कि मैं घर पे पड़ा रहता हूँ, जो भी है अब आज आज में जियो कि कल की, अब ये मत सोचो कि भगवान ऐसा क्यों किया। जो भी किया है, कहते हैं ना कि भगवान एक चीज अगर छीनता है तो दूसरी चीज देते हैं, लेकिन हम जो भी है आज में जियो और अपने ऊपर कभी कोई भी चीज हावी मत होने।
1: बिल्कुल, ये अपनी देखिए हर इंसान में कमियां होती हैं, अपनी कमी को भी हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है,
0: हावी नहीं होने देना बिल्कुल,
1: जी, क्योंकि देखिए जीवन है, कभी धूप कभी छांव तो होती है, और हम सोच भी नहीं सकते कि जीवन में क्या क्या होना होता है,
0: क्या होता है। एक गाना है ना कि जैसे कि कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया कि थोड़ा सुख है थोड़ा दुख है, दुख में तो सुख है,
1: आगे सुख तो पीछे दुख है,
0: कि हमेशा नहीं कि हमें सुख मिले, अगर हम आपको सुख मिलेगा तो हम दुख का अनुभव कैसे कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, और दुख नहीं आएगा तो हम सुख को कैसे पहचान पाएंगे, सुख का अनुभव कैसे करेंगे।
0: अगर मानो कि हमें सुख की अनुभव तब होगी ना, पहले हमें दुख सहना करना पड़ेगा, फिर हम सुख की कदर कर पाएंगे कि सुख क्या है। लेकिन अगर हम सुख मिलेगा शुरू से लेकर अभी तक तो फिर हमें सुख का अनुभव, तो फिर हम किसी की मजाक उड़ा सकते, किसी का दिल भी दुखा सकते। तो जब हमें दुख मिलेगा तो फिर हम दोस्तों की तभी तब दोस्तों की समझ पाएंगे। अगर हम सुख में जीते हैं तो हम दोस्तों को तकलीफ की, हम तो दोस्तों को फिर मजाक उड़ा पाएंगे। इसलिए कि थोड़ा दुख भी है, अगर थोड़ा दुख अगर होगा तो हम सुख का अनुभव कर सकते हैं और हम समझ भी सकेंगे, तभी तो हम दूसरों को समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल, दूसरों को समझ पाएंगे और लोगों को समझा भी पाएंगे।
0: जी जी जी जी जी,
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा राकेश जी, आपने अपना एक अलग ही रंग हमसे साझा किया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते कि जीवन में ऐसे फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने

0: हेलो
1: नमस्ते कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए।
0: गोविंद जलोदिया खाटेगांव। बस
1: गोविंद जी कैसे हैं आप?
0: ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है।
1: जी गर्मी तो है, मौसम गर्मी का है तो गर्मी तो होगी।
0: अरे पर बहुत ज्यादा ही मतलब है।
1: देखिए हम इंसान क्या होते हैं ना, ठंड होती है तो कहते भगवान कितनी ठंड है, अभी गर्मी है तो गर्मी में भी हम परेशान हैं। अच्छा आज कार्यक्रम चल रहा है बात आपकी गीत हमारे,
0: हाँ
1: इसमें हम बात कर रहे हैं जज्बातों के रंग की।
0: हाँ
1: हम आपसे कोई एक ऐसा किस्सा या कोई ऐसी बात जानना चाहते हैं जिसने कभी आपको बहुत खुशी दी हुई हो या दिल को छू गई हो, या कभी किसी की बात से आपको बुरा लगा हो जिससे आप कह भी नहीं पाए, ऐसी अगर कोई बात है तो वो हमसे साझा कीजिए गोविंद
0: तो
1: जी।
0: जो है मेरे को अभी तक याद आती है कि मेरी शादी हुई थी और मैंने वो पिक्चर है नी चुपके चुपके देखी थी। मतलब चोरी चोरी पिक्चर थी वो, तो
1: जी
0: पर चुपके किसी को मालूम नहीं पड़े, मतलब ऐसा।
1: अच्छा, चुपके चुपके आपने चोरी चोरी मूवी देखी थी।
0: हाँ
1: अच्छा आपकी
0: तो
1: शादी
0: उसमें फिर
1: वाले
0: वो
1: दिन।
0: गाना भी था मन भावन के घर गया।
1: तो ये था आपके जीवन का एक खुशी वाला किस्सा जो जुनून से

0: भरा हुआ था।
1: हाँ
0: ठीक है, आपने
1: जी
0: इतना
1: जी
0: अच्छा,
1: दीदी से भी अपन बात करते हैं नहीं तो उनको बड़ा वो रहता है कि यार वो बड़ा सिनेमा का बड़ा वो। मैं वैसे दीदी मैं सिनेमा में नौकरी करता था, फतेहगांव
0: अच्छा, बहुत अच्छा
1: में भी मैनेजर रहा मैं ताकि में।
0: जी। ठीक है गोविंद जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और इसी के साथ फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 11:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस और आधुनिक तकनीक की मदद दी जाएगी। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी। इस

0: मामले की जांच सीबीआई कर रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21,00,000 का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5,00,000 के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई है। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने आज उज्जैन पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती दर्शन में दर्शन लाभ लिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश का पहला गीत ये रहा। फरमाइशी नाम और बाकी की जानकारियाँ गीत के बाद।

अमर अकबर एंथोनी फंक का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश का गाया हुआ। धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल थे आनंद बख्शी के। सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी साथियों ने, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश, इनकी चिट्ठी आई है। और अगला ख़त लिख भेजा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, अस्मा, सालिया, शोएब, पोतरा, मुस्तफ़ा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई, साथ में हैं गांधी बाग आकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इन सभी दोस्तों की फरमाइश हमने पूरी की और अब हम

0: feelings.
1: ऐ दिल है मुश्किल, इस फिल्म का गीत आपने सुना। धुन बनाई थी प्रीतम ने, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, आवाज़ें थी अरिजीत सिंह, बादशाह जोनिता गांधी और नक्श अजीज की। और अब हम पूरी करने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, सरोजनी और कुंती साहू। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर ऋषिका और रॉबिन राणा। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता जी का गाया हुआ ये गीत।

इस गीत को रचा है गुलजार ने, संगीत तैयार किया है विशाल ने, फिल्म का नाम सत्या।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता फ़िल्म का वो नगमा जिसे गाया है भूपेंद्र सिंह ने, खयाम के संगीत निर्देशन में बोल हैं निदा फाजली के। और सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी है हमारे इन सभी श्रोताओं ने देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, प्रभाकर जोंघले और आरती जोंघले ने इस गीत को सुनना चाहा है गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से। श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित आर्य ने ये चिट्ठी लिख भेजी है गोल बाज़ार बक्सर से। इन दोस्तों की फरमाइश ये रही।

और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 पर भी आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: दोपहर के 12:25 होने जा रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। बारह बजकर 30 मिनट हुए हैं। ये समय है संग्रहालय से का। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं पंडित विष्णु शर्मा की मूल अमर कृति पंचतंत्र पर आधारित कहानियाँ। आज इसकी तीसरी कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार श्रोतागण, आशा है आप सब सकुशल हैं एवं पंचतंत्र की महान कथाओं को सुनने के लिए व्यग्र होंगे, तो हम भी प्रस्तुत हैं। पिछली कथा में आपने सुना कि किस प्रकार अपने ही पैरों पर दमनक ने कुल्हाड़ी मारी। संजीवक और पिंगलक की मित्रता से सभी पशुगण दुखी थे। अब दमनक ने योजना बनाई कि किस तरह दोनों को अलग करें। करकट के संदेह करने पर दमनक ने कहा कि अगर योजना सुनियोजित हो तो वो अवश्य सफल होता है, जैसे कौलिक की कथा।
1: किसी नगर में कौलिक तथा रत्कार नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही गांव में रहते थे। एक बार समीप के नगर में बड़ा सा मेला लगा, वो दोनों भी मेला घूमने गए। विभिन्न नटी नर्तक एवं चारणों से पूरा मेला सुशोभित था। अनेक देशों से आए दर्शनार्थी भी थे। तभी कौलिक ने सामने से एक विशाल हाथी पर चढ़कर एक अद्भुत सर्वलक्षण संपन्न सुंदरी राजकन्या को आते देखा। उसे देख उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया, होश खोकर धरती पर गिर पड़ा।
2: मित्र कौलिक उठो, क्या हो गया है तुम्हें? ये दशा कैसे हो गई तुम्हारी? तुम्हारे माथे पर भी पसीना आ गया है। उठो मित्र, उठो।
3: पानी, पानी, पानी।
2: ये लो पानी, लो लो। आराम से बैठो। कुछ स्वस्थ महसूस कर रहे हो?
3: हाँ मित्र, स्वस्थ तो हूँ, पर चैन नहीं है।
2: तुम इस तरह अकस्मात बेहोश कैसे हो गए?
3: मित्र, यदि तुम जानना ही चाहते हो तो मेरे दुख को सुनो। अगर तुम मुझे अपना मित्र समझते हो तो मेरी चिता सजाने का प्रबंध कर दो मित्र।
2: ये क्या कह रहे हो मित्र? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने का उपाय अवश्य करूंगा।
3: नहीं मित्र, नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे दुख का कोई उपाय हो सकेगा। बस अब तुम विलंब न करके मेरे क्रियाकर्म की तैयारी करो।
2: मित्र कौलिक, चलो क्षण भर के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि तुम्हारा कष्ट असाध्य है, फिर भी एक बार तो मुझे बताओ, जिससे अपने को अक्षम मानकर मैं तुम्हारे साथ अग्नि में प्रवेश हो सकूं, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा।
3: सुनो मित्र, हाथी पर बैठकर जो कन्या मेले में दिखाई पड़ी थी, उसे देखने के बाद से ही कामदेव ने मेरी ये दशा कर दी थी।
2: ओ,
3: मैं उस राज कन्या के वियोग कष्ट को सहने में असमर्थ हूँ। मैं उसे अपनी बाहों में भींचना चाहता हूँ और जानता हूँ यह असंभव है, अनुचित है, परंतु क्या करूँ? कामाग्नि से जल रहा हूँ, क्या करूँ मित्र, क्या करूँ?
2: मित्र, यदि इतनी सी बात है तो समझो भाग्य से हमारा कार्य बन गया। आज ही उसी राजकन्या से तुम्हारा मिलन हो सकता है।
3: क्या क्या कह रहे हो रत्कार? जिस अंतापुर में वायु को छोड़कर किसी का जाना संभव नहीं, वहां राजकन्या से हमारा मिलन कैसे संभव? कहीं कहीं तुम मेरा परिहास तो नहीं कर रहे हो मित्र?
2: नहीं नहीं मित्र, अब तुम देखो मेरी बुद्धि का चमत्कार।
0: और फिर कौलिक को सांत्वना देकर रत्कार ने उसी क्षण वरुण वृक्ष की लकड़ी से दो भुजाओं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, किरीट तथा कौस्तुभ से युक्त एक यंत्र संचालित गरुड़ का निर्माण किया। फिर उस गरुड़ पर विष्णु के रूप में कौलिक को बैठाकर उसे यंत्र संचालित करने की विधि को दिखाते हुए कहा,
2: इस यंत्र द्वारा रात्रि के समय तुम अंतःपुर में प्रवेश करके अपने वाक चातुर्य से अपने को नारायण के रूप में प्रस्तुत करो।
0: रथकार की बात को सुनकर कौलिक विष्णु रूप में राजकन्या के महल में जा पहुंचा।
4: कौन कौन है वहां झरोके पर?
5: मैं विष्णु हूँ। राजपुत्री, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं क्षीर सागर में लक्ष्मी को छोड़कर चला आया हूँ। मेरे साथ परमानंद का अनुभव करो सुंदरी।
4: भगवान भगवान, मैं क्या इतनी भाग्यवान हूँ? मुझे आपके दर्शन हुए, परंतु मैं मनुष्य योनि की हूँ, आप पवित्र हूँ, और आप तीनों लोकों में सबसे पवित्र हैं, वंदनीय हैं, अतः आपसे मेरा मिलन कैसे हो सकता है प्रभु, कैसे?
5: सुंदरी, तुम ठीक कहती हो, किंतु तुम मेरी गोप कुल से उत्पन्न राधा हो, मेरी प्रथम स्त्री हो। अब तुमने यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसलिए तो मैं भी यहाँ चला आया।
4: यदि यही बात है तो भगवान चलिए, हम पिता महाराज के पास चलते हैं, वे सारी बातें जानकर प्रसन्नता से मुझे आपके हाथों में सौंप देंगे।
5: प्रियसी, तुम्हारा कथन उचित है, परंतु अगर तुम्हें मुझ पर संदेह है तो चलो प्रिय, हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं, और यदि फिर भी तुम प्रस्तुत नहीं हुई तो मैं तुम्हारे पिता का सपरिवार सर्वनाश कर दूंगा।
4: प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, आप क्रोधित ना हो प्रभु, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
0: राजकन्या ने कौलिक से गंधर्व विवाह कर लिया, और उस दुष्ट कौलिक ने उसका कामदेव के शास्त्र के अनुसार उपभोग किया। प्रातः काल होने पर दूसरों की दृष्टि पड़ने से पहले ही अपने घर को लौट गया। अगले दिन पुनः राजमहल गया। इस प्रकार उस राजकन्या के साथ रह

0: बीतते हुए कौलिक का समय आनंद से बीतने लगा। शुरू शुरू में तो राजमहल में किसी को उसके आवागमन की भनक भी नहीं लगी, परंतु धीरे धीरे दास दासियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। कंचुकियों ने भी राजकन्या के खंडित अधर को देखकर आपस में खुसुर-पुसुर करना प्रारंभ कर दिया।
1: अरे शैला, क्या मैं जो देख रही हूँ तुमने भी वो देखा?
2: अरे अरे तनिक धीरे बोलो, कहीं ये बात महारानी के कानों में चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे मैंने तो ये पहले ही भांप लिया था, अब तो राजकन्या के अंगों में पुरुष साहचर्योत्तर लक्षण है।
1: परंतु मुझे ये समझ नहीं आता, चारों ओर से सुरक्षित इस अंतापुर में ऐसी घटना कैसे संभव है?
2: देखो कंचुकी, मुझे लगता है कि हमें महारानी को इस घटना से अवगत कराना चाहिए। वो हम पर कितना विश्वास करती हैं, हमें उन्हें अंधकार में नहीं रखना चाहिए।
1: मुझे तुम्हारी बातें ठीक लगती हैं। चलो, अब विलंब करना व्यर्थ है।
2: महारानी की जय हो।
3: शैला, कहो क्या संदेश लाई हो?
2: क्षमा चाहती हूँ महारानी, समझ में नहीं आता कि कैसे कहूँ, परंतु आपको सूचित करना भी आवश्यक है।
3: ऐसी क्या बात है, जो भी कहना है निर्भय होकर कहो, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है।
1: बात यह है कि हमने अपनी आँखों से तो कुछ नहीं देखा, परंतु कुछ संदेह है कि अंतापुर में राजकन्या के पास कोई पुरुष प्रवेश करता है। आपकी आज्ञा क्या है?
3: ये क्या कह रही हो, ऐसे लग रहा है मेरे कानों में किसी ने गर्म सीसा उंडेल दिया हो।
2: महारानी, हो सकता है कि ये सब सत्य न हो।
3: मेरे पैरों के नीचे से धरती फिसल रही है।
1: महारानी,
3: मगर ये बात सत्य है तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे महाराज को सूचना देनी होगी।
2: महारानी,
4: असंभव, ये कैसे हो सकता है रानी, हमारी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। ओह, अब क्या होगा, किस दुष्ट ने ऐसा कर्म किया, क्या उसे अपने प्राणों का तनिक भी भय नहीं? ओह, कन्या का पिता होना सचमुच दुखदाई है। चलिए महारानी, हम अभी राजकन्या से यथार्थ की जानकारी लेते हैं।
5: प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री।
3: पापिन, कुल कलंकनी, इस प्रकार तूने अपने शील का खंडन क्यों किया?
4: कौन है वो जो अपने प्राणों के मोह को छोड़कर इस दुर्ग समान अंतपुर में आने का दुस्साहस करता है?
3: बोल, सत्य बोल।
5: आप क्रोधित ना हो, अपनी पुत्री पर विश्वास रखें। आपके दिए संस्कार मैं भूली नहीं हूँ। माँ, यहाँ आने वाला पुरुष कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात विष्णु है। वही प्रतिदिन रात्रि के समय गरुड़ पर चढ़कर यहाँ आया करते हैं।
4: क्या कह रही हो पुत्री, ये कैसे संभव है, स्वयं नारायण यहाँ आते हैं? आपने हमें इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं दी, हम भी प्रभु के दर्शन कर लेते।
5: नहीं पिता महाराज, उन्होंने हमें निषेध किया था, मेरे अलावा वो किसी को दर्शन नहीं दे सकते, ना ही बात कर सकते हैं। मैं उनसे गंधर्व विवाह कर चुकी हूँ। पिताश्री, यदि आपको मेरी बातें असत्य लगती हैं, तो आज ही रात्रि में छिपकर आप स्वयं अपने नेत्रों से नारायण के दर्शन कर सकते हैं।
3: महाराज, हम धन्य हो गए, आपकी भाग्य वृद्धि हो, साक्षात नारायण से हमारी कन्या ने गंधर्व विवाह किया है, ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है।
4: आप सत्य कहती हैं महारानी, आज हम दोनों भगवान नारायण को रात्रि में छिपकर खिड़की से देखेंगे।

0: महारानी, रात का पहला पहर तो बीतने को आया और अभी तक कोई नहीं आया है।
1: धैर्य रखें महाराज, वो देखिए, वो देखिए महाराज, गरुड़ पर साक्षात विष्णु आकाश मार्ग से आ रहे हैं। वाह, अद्भुत।
0: हाँ महारानी, हम और हमारा कुल धन हो गया। इस ब्रह्मांड में मुझसे बढ़कर धनी और भाग्यवान कोई नहीं है। हमारी संतति का उपभोग स्वयं नारायण कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा। अब मैं सारे संसार का स्वामित्व लूंगा और सभी मेरे दास होंगे। मेरा जमाता स्वयं विष्णु भगवान है। सारे सीमावर्ती राजागण मेरे अधीनस्थ होंगे।
2: राजा तो उन्मादित हो गए, सभी राज्यों पर चढ़ाई करने लगे, सभी के साथ युद्ध छेड़ दिया और वीर राजाओं के हाथों परास्त होने लगे।

0: पुत्री, तुम्हारे जैसी कन्या और विष्णु जैसे जामाता के रहते हैं, क्या यह संभव है कि राजागण मुझसे युद्ध करें और मुझे किले में बंदी बनाने का दुस्साहस करें? तुम जामाता से कहो कि मेरे शत्रुओं का विनाश कर दे, नहीं तो कल सूर्य उदय तक वो हमारे दुर्ग को नष्ट कर देंगे।
1: जी पिताश्री,

0: सुंदरी, रात्रि के इस मधुर बेला में तुम्हारा साथ कितना आनंददायक है, परंतु तुम शांत क्यों हो? कोई चिंता?
1: भगवान, आपके रहते मेरे पिता शत्रुओं से घिरे हुए हैं, ये कैसे संभव है? आप कृपया उनके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश कर दीजिए प्रभु।
0: सुभगे, तुम्हारे पिता के शत्रुओं की संख्या ही कितनी है, तुम निश्चिंत रहो, मैं क्षण मात्र में अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनको तृण की तरह छिन्न भिन्न कर डालूंगा।
1: हाँ भगवान, हाँ, आप नहीं करेंगे तो उनकी सहायता और कौन करेगा? कल प्रातःकाल दुर्ग में विनाश हो जाएगा प्रभु। दुर्ग के अंदर ईंधन रसद समाप्त हो चुके हैं। मेरी अवस्था देखिए, मेरी अवस्था को देखते हुए आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें।
0: सोचता हूँ दुर्ग के टूट जाने पर तो राजकन्या भी छूट जाएगी, ये तो और भी उत्तम होगा। मैं आयुध करुड़ पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से प्रकट हो जाऊंगा। संभव है कि मुझे वासुदेव समझकर शत्रुपक्ष भयभीत हो जाए और राजा की सेना उसे परास्त कर दे, और अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो क्या? प्रिय, मेरे रहते तुम्हारी आंखों में आंसू, ये मेरे लिए असहनीय है। अब मैं तभी तुम्हारा दर्शन करूंगा जब संपूर्णतः शत्रुओं का विनाश हो जाए। तुम अपने पिता महाराज से कहो कि प्रातःकाल वो सेना के साथ निकलकर शत्रु पक्ष से युद्ध करें, मैं आकाश से उनके शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा, वे आसानी से परास्त हो जाएंगे।
1: प्रभु, प्रभु,
2: कौलिक के वचन को सुनकर राजपुत्री ने अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया। पुत्री की बात को सुनकर राजा बड़े प्रभावित हुए। उधर कौलिक भी शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को लेकर गरुड़ पर चढ़कर आकाश मार्ग से युद्ध करने के लिए चल दिया। उधर एक मजेदार घटना घटी। त्रिकालदर्शी ने ध्यान लगाकर सारी घटना जान ली। उन्होंने गरुड़ से कहा,
3: हे गरुड़, क्या तुम्हें विदित है कि कौलिक काट के गरुड़ पर चढ़कर मेरा रूप धारण करके राजकन्या के पास जाया करता है?
4: हाँ देव, मैं उसके प्रत्येक कृत्य को जानता हूं, उसका साहस अद्भुत है, परंतु अब क्या किया जाए?
3: मरने का निश्चय करके प्रतिज्ञाबद्ध होकर वह कौलिक आज युद्ध क्षेत्र में गया है, और यह निश्चित है वह आज वीर क्षत्रियों के हाथ से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होगा।
4: किंतु भगवान, उसके मरने के बाद सभी लोग ये कहने लगेंगे कि क्षत्रियों ने मिलकर वासुदेव और गरुड़ दोनों को पराजित कर दिया। इस अपवाद के फैलते ही लोग हमारी अर्चना बंद कर देंगे। कोई उपाय कीजिए ना प्रभु।
3: आप सत्य कहते हैं गरुड़देव। आप तत्काल जाकर उस काष्ठमय गरुड़ के शरीर में प्रवेश करें।
4: जी।
3: सभी शस्त्रों को सजग करके मैं भी कौलिक के शरीर में प्रवेश करता हूं, जिससे वो शत्रुओं का विनाश कर सके।
2: और फिर स्वयं नारायण एवं गरुड़ ने सारे शत्रुओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। राजा और प्रजा दोनों धन्य धन्य होने लगे।

0: वाह, आनंद ही आनंद है। ये तो मेरे पूर्व जन्मों का फल ही है कि तीनों लोकों के स्वामी आज मेरे जमाता है। उनके कारण ही मैं सीमावर्ती राजाओं को परास्त कर सका। प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न है।
1: पिताश्री प्रणाम। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब आपके जमाता आपसे मिलना चाह रहे हैं।
0: क्या? अहो भाग्य, अहो भाग्य, आज मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। प्रभु आइए, प्रभु पधारिए।
2: मुझे लज्जित न करें, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं।
3: और फिर कौलिक ने महाराज को शुरू से अंत तक सारी घटना सुना दी। कौलिक के सत्य कथन को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने सोचा, ये शत्रुओं का विनाश करने वाला वीर, इससे सुयोग्य दामाद हमें कोई नहीं मिलेगा। उसने राजकन्या से कौलिक का विवाह करवा दिया। दमनक ने ये कथा सुनाकर कहा कि षड्यंत्र सुनियोजित ढंग से किया जाए तो ब्रह्मा को भी ज्ञात नहीं होता।

आगे करकट और दमनक क्या करेंगे ये आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की तीसरी कड़ी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। भारत और यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच अबू धाबी में हुए। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रखी माँ बागदेवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे और हर चरण में सिर्फ एक आवेदन मान्य होगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति

0: हिंदी मातृभाषा नहीं अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने वालों की भक्ति है। मैं पुनः दोहराती हूँ कि हिंदी मातृभाषा नहीं अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने वालों की भक्ति है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ आपकी बहन स्मृति और मैं लेकर आई हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें होंगी ढेरों बातें और संगीत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम महिला सभा। श्रोताओं, किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम मात्र से नहीं होती है, उसकी पहचान उसके कर्मों से, उसके स्वभाव से, उसके पहनावे से और उसकी भाषा से होती है। जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ टूरिज्म को देखते हैं, तो उनके बिना बताए ही उनके पहनावे से और उनकी भाषा शैली से उनके निवास स्थान का अंदाजा लगा लेते हैं। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है, जिसका जन्म सदियों पूर्व हुआ है। हाँ, मौखिक भाषा तक पहुँचने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी रही है। हमारी हिंदी भाषा भारत की राजभाषा, सांस्कृतिक धरोहर की संवाहक है, एकता का सूत्र है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक दर्जे पर आई और ये दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई। यह भारतीय संस्कृत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाती है और देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ती है। श्रोताओं, भारत की भाषाई विविधता हमारे देश सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है। हमारी भारतीय भाषाओं का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध भी है। आइए अपनी भाषा के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पहला, संवैधानिक स्थिति। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया। इनमें हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत एवं अन्य भाषाएं शामिल हैं। भाषाई परिवार। भारत की भाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जैसे गद्य भाषा एवं पद्य भाषा। हमारी भाषा पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखित हैं। ये पुस्तकें NCERT, ICSE या राज्य बोर्ड के तहत तैयार की जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाना है और साथ ही व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने की कला सिखाती है। अब आइए बात कर लेते हैं भारतीय भाषा की पुस्तक योजना के बारे में। तो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री और पुस्तकों को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं इसके उद्देश्य। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ बनाना है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि छात्रों को उनकी अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे विषय की समझ बेहतर हो। अनुवाद और मूल लेखन इसके तहत अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। साथ ही क्षेत्रीय लेखकों को मूल सामग्री लिखने को प्रेरित किया जाता है। उच्च शिक्षा पर ध्यान। यह योजना विशेष रूप से इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और विज्ञान जैसे तकनीकों पाठ्यक्रमों की पुस्तकों को स्थानीय भाषाओं पर उपलब्ध कराने पर जोर देती है। डिजिटल उपलब्धता। पुस्तकों को न केवल प्रिंट रूप में बल्कि ई-बुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि दूर दराज के छात्र भी इसका लाभ उठा सके और अपनी भाषा का भी महत्व समझे। अपनी भाषा अपनी पहचान, यही है भारत की शान। श्रोताओं, हमारी बातें अभी और होंगी, उसके पहले सुनते हैं यह गीत, जिसे आवाज दी है सुनिधि चौहान और करीना कपूर ने।
1: A daughter is a daughter. All

तो इस गीत के बाद मैं स्मृति पुनः प्रस्तुत हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा में। श्रोताओं, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जब हमारे पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तब से आज तक आकाशवाणी जन जन तक देश विदेश की खबरों, संगीत, आवश्यक जानकारी व मनोरंजन करती आई है। आज भी बहुत से लोग हैं जो रेडियो को बड़ी ही उत्सुकता के साथ सुनते हैं। तो एक ऐसी ही श्रोता हमारे बीच हैं, पुष्पा सिंह जी, जो रीवा जिले के माँ गायत्री शक्तिपीठ की ट्रस्टी हैं, जिन्हें सुनते हैं एक भेंट वार्ता के माध्यम।

0: तो बचपन से रेडियो के इतने शौकीन थे कि कोई भी काम करते थे तो रेडियो ही चला के काम करते थे, और आपका पता ही नहीं चलता था कि क्या हमारा काम पूरा हो गया और हम बड़े प्रेम से सारे काम हमारे होते थे, और खासकर महिलाओं के कार्यक्रम महिलाओं के लिए जो आते थे। और मैं गीतों की बहुत शौकीन थी, चाहे वो फिल्मी हो चाहे भजन हो, उनको मैं बहुत अच्छे से सुनती थी और मैं बहुत शौक थी। हालांकि मुझे विविध भारती के तो सारे ही प्रोग्राम बहुत पसंद थे, चाहे बिना का गीत माला हो चाहे हवा महल हो। हवा महल की कहानियाँ आज भी हम सुनते हैं, कभी भी मन हो जाता है। मैं टीवी के बजाय रेडियो को सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे हमारे काम भी होते। टीवी तो हमको देखना पड़ता बैठ के, लेकिन रेडियो में हम काम भी करते रहते हैं और हम सब सुनते भी रहते हैं,
1: तो यानी कि इसमें कोई समय की बर्बादी नहीं होती है।
0: समय की हमारी बर्बादी नहीं होती है बहन, और जो है हमारी काम भी अच्छे से होते रहते हैं। और कई बार हवा महल का जो प्रोग्राम आता है, पुरानी जो छोटी छोटी सी कहानी अपने पति पत्नी की आपसी वार्तालाप, इतना मेरे को पसंद आता है, और हम लोग उसके लिए बड़े बेकरार रहते थे। और बिना का गीत माला, कौन सा गाना टॉप पे आएगा, ये कौन सा गाना, ये बड़ी उत्सुकता हमारे मन में रहती थी। और फौजियों के लिए कार्यक्रम में वो भी बहुत पसंद था। मैं रेडियो की इतनी बड़ी प्रशंसक हूँ कि मैं क्या बताऊँ, कितनी तारीफ करूँ। हर प्रोग्राम ही उसके सब बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे समाचार हो चाहे बिना का गीत माला हो, और चाहे हवा महल हो या छोटी छोटी कहानियाँ हो, या महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम होता है उसमें तरह तरह के व्यंजन बनाना भी बताते हैं, बहने तो बहुत पसंद आते हैं। कई बार हम लोग बहुत ट्राई करते थे कि आज ये आया है बना के देखते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में ये तो होता नहीं, गूगल तो होता नहीं था, गूगल तो होता नहीं था, तो हम रेडियो पर जो आती थी व्यंजन विधि उसको सुनते थे और फिर बनाने का प्रयास करते थे।
1: जी जी,
0: तो बहुत अच्छा लगता था हमें, बहुत ही मतलब कहाँ तक मैं उसकी तारीफ करूँ। आज भी हम उसी तरह से रेडियो के प्रशंसक हैं, चाहे कितना ही भी आ गया है, यहाँ बहुत सारी चीजें आ गई
1: है, आया है,
0: लेकिन उसका मुकाबला
1: आज भी नहीं है।
0: आपसी बहनों की जो चर्चा होती है, जब दो बहनें आपस में बात करती हैं, तो लगता है कितनी अपनत्व है कितना। और फरमाइशी प्रोग्राम में गांव-गांव से टीवी में कहाँ आता है, गांव से आज भी हम जब सुनते हैं ना फरमाइशी प्रोग्राम, तो जो बताते हैं ना, हम तो किसानी का काम करते हैं, हम तो सिलाई का काम करते हैं, हम तो खेत में बैठकर रेडियो सुन रहे हैं, तो इतना अपनत्व तो लगता है कि हम पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। फरमाइशी प्रोग्राम जो है उसमें जो आता है, इतना अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई ये सब अपने जुड़े हुए हैं, सब हमारे ही हैं, कहाँ कहाँ से कितना जाते हैं, अपने अपने पत्र भेजते हैं, कितनी खुशी होती है जब उनके पत्र मतलब पढ़ते हैं,
1: पढ़े जाते हैं हमारे नाम पढ़े जाते हैं,
0: तब बहुत खुशी होती है। मैं भी पहले बहुत पत्र लिखती थी, एक आध बार मेरा भी नंबर आया है, और मैं भी पहले रेडियो में प्रोग्राम देती थी, तो गीत में भी मैंने प्रोग्राम दिया है अपना, और चर्चा में वैदिक संस्कृति के ऊपर भी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था कि भारतीय नारी जब और अब, इसमें हमारा प्रोग्राम हुआ था। तो रेडियो का तो कोई वो ही नहीं है,
1: बिल्कुल
0: तोड़ नहीं है, चाहे कितना भी आधुनिक आ जाए और कितना ही हो जाए, लेकिन रेडियो हमारे लिए आज भी उतना ही आवश्यक है और बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे किसी काम पर उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है,
1: बिल्कुल
0: नहीं पड़ता है, चाहे हमारे काम भी चलते रहते हैं और हम सुनते भी रहते हैं।
1: बिल्कुल पुष्पा जी, आपने अच्छे से जानकारी दी, आप वाकई में रेडियो की एक अच्छी श्रोता हैं, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की खुशी में आज आपसे हमारी बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी।
0: मेरी तरफ से भी बहन, श्रुति बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके उत्सुकता को व्यक्त कर सकूं और आपके लिए कुछ थोड़ा सा अपना समय दे सकूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो बहनों, अभी हमने सुनी है भेंटवार्ता जिसमें बात कर रही थी पुष्पा सिंह जी। श्रोताओं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है भारतीय भाषा के बारे में, तो हमारी भाषा का कोई तोड़ तो नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी हर प्रांत की हर क्षेत्र की भाषा की अपनी अलग पहचान होती है। एक

रस होता है और साथ ही भाषाओं में और अधिक रस कब पड़ता है जब कोई लेखक या शायर अपने शब्दों में या भाषा को मिश्रित करता है तो लोग मंत्रमुग्ध होकर भाषा का आनंद लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही शायरा सकीला बानो भोपाली के बारे में जो शायरा होने के साथ साथ कवियत्री और मंच संचालिका भी थी। उनका जन्म 1940 में भोपाल में हुआ था। वो खास तौर पर उर्दू शायरी और मुशायरों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुत के लिए जानी जाती थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे उस दौर की पहली मशहूर महिला शायरों में से एक थी जिन्होंने बड़े बड़े मुशायरों में मंच संभाला और अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज, अंदाज और हास्य से भरी शायरी लोगों को बहुत पसंद आती थी। सकीला बानो भोपाली ने देश विदेश के कई मुशायरों में भाग लिया और उर्दू साहित्य को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें मुशायरों की मलिका भी कहा जाता है। उनकी शायरी में प्यार, समाज, महिलाओं की भावनाएं, जिंदगी के अनुभव झलकते थे। वे कई फिल्मों एवं रेडियो कार्यक्रमों से भी जुड़ी रही। आइए सकीला बानो के बारे में कुछ और सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। सकीला बानो को कम उम्र में ही संगीत और शायरी में रुचि थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही शायरी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी कव्वाली को केवल धार्मिक मंचों तक सीमित नहीं रखा बल्कि मनोरंजन और सामाजिक संदेश का माध्यम भी बनाया। उनकी गायकी में उर्दू शायरी, सूफी अंदाज और हल्का भी शामिल होता था। वो अपनी तेज आवाज, आत्मविश्वास और मंच संचालन के लिए मशहूर थी। चूंकि उस दौर में महिला का मंच तक पहुंच पाना एवरेस्ट चोटी तक पहुंचने से कम नहीं था, इसलिए उनके रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आईं। लेकिन सकीला बानो हार न मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से लोगों का मन जीता और महिला कलाकारों के लिए नई राह बनाई और इस तरह लोगों के मन में अपनी छाप छोड़ने के बाद सन 2002 में सकीला बानो की मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी लोग सकीला बानो को बड़े सम्मान से याद करते हैं। तो आइए हम भी उनके सम्मान में सुनते हैं ये कव्वाली।

बहनों, गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। तेज धूप और चुभती गर्मी ने इंसान का हाल बेहाल किया है। घर से बाहर निकलना दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसे में हमें खुद की सुरक्षा का ध्यान बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे को सफेद कपड़े से ढक कर रखें और पानी की बोतल साथ रखें। और हाँ, धूप से लौटने पर एक सांस में ज्यादा पानी ना पिएं, थोड़ा थोड़ा करके पिएं। साथ ही मसालेदार खाने से थोड़ा परहेज करें और ठंडक वाले भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे दही, छाछ, खीरा, ककड़ी, नींबू, पुदीना, खिचड़ी या मूंग दाल, बेल का शरबत आदि। इसी कड़ी में हम आज जानेंगे मुनगे की कढ़ी बनाने की विधि। तो सबसे पहले जान लेते हैं कढ़ी को बनाने की सामग्री। सामग्री है 1 कप खट्टा दही, 2-3 चम्मच बेसन, 2 साबुत लाल मिर्च, राई छोटा चम्मच, मुनगा 8-10, हल्दी, सरसों का तेल, मेथी, करी पत्ता, लहसुन व नमक। अब आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले मुनगे को छीलकर छोटे छोटे लगभग 2-2 इंच के टुकड़े कर लें और तेल में फ्राई कर लें। अब एक बर्तन में दही, बेसन व पानी का मिश्रण तैयार करें। इसके बाद कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गर्म करें और राई, मेथी दाना, साबुत लाल मिर्च, लहसुन तथा हल्दी का तड़का लगाएं। तड़का ठीक से सुनहरा हो जाने पर दही बेसन के मिश्रण को भी कढ़ाई में डालें और अंदाजे कि मिश्रण न ज्यादा गाढ़ा हो और न ज्यादा पतला, और बड़े चम्मच से धीरे धीरे चलाते रहें। कढ़ी में उबाल आने पर मुनगे के टुकड़े को डाल दें, साथ ही स्वाद अनुसार नमक भी डालें और ठीक से पकाएं। अब इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, यह दोनों में ही लाजवाब लगती है और सेहत से भरपूर होती है। खास करके गर्म के मौसम में मुनगे की कढ़ी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो बहनों, अंत में सुने एक और गीत, जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

0: बहनों अभी हमने सुना ये गीत जिसे आवाज दी थी शंकर महादेवन ने, और इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक दीजिए अपनी बहन स्मृति को इजाजत, नमस्कार।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: सुनो, तुम रेडियो मतलब आकाशवाणी सुनती हो कि नहीं?
5: अरे क्या बात पूछी तुमने, आकाशवाणी और विविध भारती तो हमारी जिंदगी है, इसके बिना तो हमें चैन ही नहीं पड़ता।
4: ये तो सही है, लेकिन आकाशवाणी इंदौर पर विज्ञापन देना हो तो कैसे देंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे मेरे गृह उद्योग और मेरी सहेलियों के अलग अलग बिजनेस के विज्ञापन देना है।
5: अरे ये तो एकदम आसान है, इसके लिए आकाशवाणी इंदौर के विज्ञापन विभाग में संपर्क करना पड़ता है, और आकाशवाणी इंदौर पर अब शुभकामनाएं संदेश भी दिए जा सकते हैं,
4: वो भी एकदम सस्ती दर में।
5: तो चलो चलते हैं आकाशवाणी इंदौर।
1: एड्रेस है आकाशवाणी इंदौर, मालवा हाउस, रेसिडेंसी एरिया, इंदौर।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है लोक संगीत, कलाकार हैं मणिमाला सिंह और साथी।

0: मणिमाला सिंह और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है सुगम संगीत। कलाकार है मुकुल सोनी।

मुकुल सोनी के गाए इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: सुनो, तुम रेडियो मतलब आकाशवाणी सुनती हो कि नहीं?
4: अरे क्या बात पूछी तुमने, आकाशवाणी और विविध भारती तो हमारी जिंदगी है, इसके बिना तो हमें चैन ही नहीं पड़ता।
3: ये तो सही है, लेकिन आकाशवाणी इंदौर पर विज्ञापन देना हो तो कैसे देंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, मेरे गृह उद्योग और मेरी सहेलियों के अलग अलग बिजनेस के विज्ञापन देना है।
4: अरे ये तो एकदम आसान है, इसके लिए आकाशवाणी इंदौर के विज्ञापन विभाग में संपर्क करना पड़ता है और आकाशवाणी इंदौर पर अब शुभकामनाएं संदेश भी दिए जा सकते हैं,
3: वो भी एकदम सस्ती दर में।
4: तो चलो चलते हैं आकाशवाणी इंदौर।
3: एड्रेस है आकाशवाणी इंदौर, मालवा हाउस, रेसिडेंसी एरिया, इंदौर।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है फिल्म संगीत।

शंकर जय किशन के संगीत से सजा गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीत संगीत एक बार फिर हसरत जयपुरी और शंकर जय किशन का। फिल्म है आरज़ू।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म आरजू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री

0: सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
2: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मरीजों के निशुल्क डेंगू और मलेरिया की जांच की जा रही है। जबलपुर में आज न्यायपालिका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश शामिल हो रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजनरी एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आधारित इस सेमिनार में न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वाग्देवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है, जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। सतना जिले के चित्रकूट में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के 37 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात में भी तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, धार और देवास सहित कई जिलों में तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। विश्व कप 2020 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने शनिवार सुबह उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित अन्य खिलाड़ियों ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी सर्किल जेल के मुलाकाती क्षेत्र में लीगल एंड हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें बंदियों और परिजनों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर अनुवांशिक रक्त विकारों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज रायसेन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीबीएसई ने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक

0: साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज AI, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना,
3: उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा

0: देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: आपसे कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश का पहला गीत आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज में। हसन कमाल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने। फिल्म है एतबार।

एतबार फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इसकी फरमाइश हमें सीतामणि बिहार से भेजी थी। अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, रुबीना, आरिज, अरहान, हमजा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की भी यही पसंद थी। इसी गीत को सुनना चाहा था बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद अजीज की आवाज में। इंदिवर की रचना है राजेश रोशन का संगीत और फिल्म है आखिर क्यों। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने। भागचंद साहू, अजय साहू, राज साहू, करिश्मा, प्रेमबाई और साहू परिवार के सभी सदस्यों ने राजेंद्र नगर गंज बासौदा विदिशा से ये पत्र भेजा है। खुरई तिगड्डा ग्राम कल्याणपुर वीर से फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं मनीष कुमार पाराशर, परी, आकांक्षा, राधिका, नीना, खुशी, प्रेम नारायण, हीराबाई, हेमंत, अभिषेक, मोहित, मयंक, अनीता, सविता, पूनम, रविशंकर, निरंजन, राकेश, मुकेश, तरुण, प्रवेश, नमन, पवित्र दुबे और उनके सभी साथी।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत जगजीत सिंह की आवाज में। फिल्म राही के लिए इस गीत को लिखा है नक्श लायलपुरी ने। संगीत जगजीत सिंह का है और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला खां, नसीम बेगम, आयशा खां, हादिया, अस्मा, सालेहा, शोएब और उनके परिवार के सभी सदस्य। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी और दतरेगी से भागवत वर्मा। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से एमएम राजावत, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और राजावत परिवार के सभी सदस्य। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत।

और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत भूपेंद्र सिंह की आवाज में। फिल्म है एक नया रिश्ता। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा।

फरमाइशी पत्र प्रमिलागंज आलौट जिला रतलाम से आया है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की फरमाइश है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और हार्दिक और वंश बत्ता ने इस गीत को सुनना चाहा है। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की भी यही पसंद है।

एक नया रिश्ता। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज में। इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के हैग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान श्री शाह विभिन्न समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। CBSE ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IPL में आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में KKR और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। शाम 6 बजे का समय रहेगा आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का तीसरा भाग। इस विशेष भेंटवार्ता में आप सुनेंगे यादें, अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अनिल श्रीवास्तव से ली गई भेंटवार्ता।

7:21 का समय रहेगा ग्राम सभा कार्यक्रम का। 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 से चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32

मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स। साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01 और 15 सेकंड हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती।

टाइम हो रहा है 4:29।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार श्रोताओं, मैं जयती स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। श्रोताओं, आज है शनिवार, यानी हमारा फोन इन का कार्यक्रम जिसमें हम करेंगे हमारे श्रोताओं से बातचीत और सुनेंगे उन्हीं के पसंद के गीत। लेकिन उसके पहले कि हम हमारे कॉलर से जुड़ना शुरू करें, मैं चलती हूं कार्यक्रम के उस सेगमेंट में जिसे मैं आज में आपसे पूछूंगी, सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। और उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है, विविध भारती सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? मैं दोहराती हूँ, विविध भारती सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? और आज का दूसरा प्रश्न है, चंद्रयान 3 का लैंडर किस नाम से जाना जाता है? मैं दूसरा प्रश्न दोहराती हूँ, चंद्रयान 3 का लैंडर किस नाम से जाना जाता है?

0: है। मुझे उम्मीद है कि कार्यक्रम के अंत तक आप इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब ढूंढ कर रखेंगे। तो बिना किसी देर के हम चलते हैं और जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो,
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: तारीफ कैसे करें आपकी हर लज्जो खुशबू वाली गुलाब की।
0: धन्यवाद जी। पहले तो आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं और आज आप युवाणी से कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: सीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: आपसे तो मेरी हर हफ्ते एक ना एक बात तो बात हो ही जाती है। कैसी हैं आप?
1: जी जी अच्छे हैं।
0: अच्छा, पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आज आप युवाणी से कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: फिल्म का नाम है गौतम गोविंदा।
0: गौतम गोविंदा फिल्म से? अच्छा, और मुझे मुझे मालूम है कि आप हर बार कॉल के साथ में दो तीन पंक्तियां हमें गाकर भी सुना ही देती हैं, तो आज भी वही कर लेते हैं। तो थोड़ा आप मुझे गाकर भी सुना दीजिए, हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए साथ में।
1: तेरा बिटवा जवान हुई गवाह, ओ माँ मेरी शादी कराई दे। तेरा बिटवा जवान हुई गवाह, ओ माँ मेरी शादी कराई दे। अगर ये गाना ना मिले मैडम तो फिर वक्त की दीवार का गाना है। मन चाहे लड़की कहीं कोई मिल जाए, अपना 20 साल शादी का इरादा है। मन चाहे लड़का कहीं कोई मिल जाए, अपना 20 साल शादी का इरादा है।
0: ठीक है ठीक है, आपने हमें दो ऑप्शंस बता दिए हैं तो हम ढूंढ तो रहे हैं उन्हें हमारे सिस्टम में। हमें उम्मीद है कि उनमें से एक गाना तो हमें जरूर ही मिल जाएगा। तब तक के लिए आप बताइए कि क्या चल रहा है गर्मियों में, कैसे आप गर्मी के दिन काट रही हैं?
1: जी, और अच्छे दिन काट रहे हैं मैडम, गर्मी में तो घर में ही है। और जो पहला सवाल आपने पूछा ना, उसका एक का जवाब हमें पता है।
0: अरे वाह, बताइए बताइए। बिल्कुल,
1: 3 अक्टूबर 1957।
0: बहुत बिल्कुल सही जवाब बताया है आपने। ये तो मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि हमने जो प्रश्न पूछे हैं उनका हमें किसी ने उत्तर भी दिया हो, तो बहुत खुशी हुई। और बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप
1: तो पहले ही कॉल में मैंने आपका उत्तर दे दिया।
0: बिल्कुल, ये भी बड़ी किस्मत की बात है। बताइए अगर आपके पहले किसी ने हमें उत्तर दे दिया होता तो फिर आपकी वो उसका क्या होता? तो कि आपने इतने आपको आप तो ये बताएं कि आपको आपको इसके बारे में कैसे पता था, आपको कैसे पता कि 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती की शुरुआत की गई थी?
1: वो हमारे भाई को पता है, वो बताते रहते हैं, हमको सब पता रहता है उनको, वो पढ़े लिखे ना ज्यादा।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो हम क्या पहले भोपाल सुनते थे तो उसमें जीनियस में ऐसे सवाल पूछते थे मैडम, तो कभी कभी तो हम जीनियस बन जाते थे, कभी नहीं बन पाते।
0: नहीं नहीं, आपने ऐसा एकदम हिस्टोरिक सवाल जो है इतिहास रिलेटेड मतलब आकाशवाणी के उसका आपने उत्तर दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे तो लगता है कि आप युवाणी की क्या, मुझे लगता है आकाशवाणी की आप बहुत ही नियमित श्रोता हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मेरा फोन इनका कार्यक्रम होता है एक ना एक बार तो मेरी आपसे बात हो ही जाती है।
1: जी, देखो आकाशवाणी इंदौर से भी जुड़े, भोपाल से भी जुड़े, मुंबई से भी जुड़े हैं, और जितने भी कार्यक्रम आसपास सब दूर से आते हैं ना, वहीं से सबसे जुड़े रहते हैं मैडम, और जैसे ही फुर्सत मिलती है कॉल कर लेते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। और आप कॉल करती हैं और आपका बात करने का अंदाजा भी मुझे इतना पसंद है कि आपसे बात करके दिल एकदम खुश हो जाता है मेरा।
1: जी ऐसे ही नहीं मैडम, कि सिर्फ कॉल ही करते हैं, हमारी चिट्ठियों भी बहुत सारी आती मन भावन में चॉइस टाइम में।
0: चलिए, तो आपकी पसंद बहुत अच्छी बात है और आप कॉल करती हैं, धन्यवाद उसके लिए बहुत ज्यादा। और आपकी पसंद का भी गीत हमें मिल चुका है, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
1: जी शुक्रिया मैडम,
0: थैंक यू।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: चलिए श्रोताओं, अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। नमस्ते जी। हेलो फ्रेंड्स। हेलो।
3: नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
3: रफीक बोल रहा हूँ, इंदौर से।
2: नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: ठीक है मैडम, आप कैसे?
2: मैं भी एकदम ठीक हूँ। चलिए पहले तो मुझे बता दीजिए कि हम आपको कौन सा गाना सुनवाई युवाणी से आज?
3: शराबी फिल्म का।
2: कौन सी फिल्म का?
3: शराबी, शराबी,
2: शराबी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: दे दे प्यार दे।
2: दे दे प्यार दे। अच्छा जी, चलिए जब तक हम सिस्टम में अपना गाना ढूंढते हैं तब तक मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, गर्मी के दिन कैसे काट रहे हैं?
3: सब अच्छे से काट रहे हैं मैडम, तो एहतियात बरतनी पड़ती गर्मी में।
2: तो आप चलिए आप हमें बता दीजिए, हमारे श्रोताओं को भी बताइए कि गर्मियों में आप कौन सी एहतियात बरत रहे हैं और हमें क्या एहतियात बरतनी भी चाहिए। आप एक अच्छा संदेश दे दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए आज।
3: मैडम ये है कि गर्मी धूप में ज्यादा न जाए और पानी ज्यादा ज्यादा पिए, और कोई जरूरी खास काम हो रहा है वही निकले और सिर को तो बिल्कुल ढके, क्योंकि सिर को गाढ़ा न रखे, तो कभी जो ओजोन परत मतलब बहुत कमजोर होती जा रही है हमारी।
2: बिल्कुल बिल्कुल।

श्रोताओं, चलिए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो हेलो फ्रेंड्स, चलिए जब तक हम हमारे अगले कॉलर से जुड़ते हैं, मैं बता दूं आपको कि आज हम तीन विशेष अवसरों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज है सिक्किम राज्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वैसे तो ये तीनों दिन अवसर अलग अलग विषयों से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन इनका संदेश एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ता है। सिक्किम राज्य दिवस हमें भारत की विविधता, संस्कृति और प्रकृति के साथ सामंजस्य की प्रेरणा देता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ज्ञान, नई सोच और प्रगति और की रोशनी का प्रतीक है, और इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस हमें ये सिखाता है कि विकास और ज्ञान तभी सार्थक हैं जब हम समाज में एकता, सम्मान और शांति बनाए रखें। देखा जाए तो इन तीनों अवसरों का सार यही है कि जब विविधता, ज्ञान और आपसी सद्भाव एक साथ चलते हैं, तभी एक बेहतर समाज और बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। तो आप इन तीनों दिवसों को जरूर याद रखिएगा और इनसे जुड़े संदेशों को भी। अब हम देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर से हम जुड़ पा रहे हैं या नहीं। मुझे लगता है कि किसी तरह का भी नेटवर्क इशू आ रहा है हमें, तो हम तब तक एक काम करते हैं, फिल्म बॉस से सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम मना रहे हैं सिक्किम राज्य दिवस। हर वर्ष 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था और इसी दिन से उसने भारत के संघीय ढांचे में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। हिमालय की गोद में स्थित सिक्किम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्यों में से एक है, लेकिन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के कारण इसकी एक अलग पहचान बन चुकी है जो कि बहुत ही बड़ी है। सिक्किम अपने बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं, हरे भरे जंगलों, सुंदर झीलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ अनेक समुदायों और संस्कृतियों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है और यही विविधता सिक्किम को और भी विशेष बनाती है। इसके साथ ही सिक्किम ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है और जैविक खेती को बढ़ावा देकर पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज जब दुनिया विकास और आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रही है, तब सिक्किम हमें ये सिखाता है कि विकास केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं के लिए ही सिक्किम प्रेरणा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, जो ये संदेश देता है कि यदि सोच और सकारात्मक प्रयास हों, तो प्रगति और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ चलिए हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, लता जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में।

चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी कि शांति से एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के बीच शांति, एकता, आपसी सम्मान और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। आज का समाज विविधता से भरा हुआ है। श्रोताओं, अगले अलग अलग देशों, भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों वाले लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे में विचारों में भिन्नता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन इन भिन्नताओं के बावजूद एक दूसरे को समझना, सम्मान देना और मिलजुल कर आगे बढ़ना ही समाज की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये दिवस हमें ये संदेश देता है कि शांति केवल संघर्षों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना है जो सहयोग, सहिष्णुता और संवाद से विकसित होती है। जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तब समाज में सद्भाव और विकास का वातावरण बनता है। युवाओं की भूमिका इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा अपने विचारों, ऊर्जा और रचनात्मक सोच के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कार्य करें जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिल सके। यही इस दिवस का मूल उद्देश्य है, शांति, सहयोग और एक बेहतर भविष्य की ओर साथ मिलकर आगे बढ़ना। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर, फिल्म रंग दे बसंती से, और फिल्म का टाइटल, गाने का टाइटल है रूबरू। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं लंबे समय के बाद, तो चलिए हम पहले हमारा कॉल ले लेते हैं। नमस्ते। कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो चलिए हम फिर रंग दे बसंती का ही गीत सुन लेते हैं। हेलो हेलो

0: मुझे लगता है हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते।
1: जय माता जी।
0: नमस्ते जय माता दी, कैसे हैं आप और क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम पूर्ण वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का ना अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: अरे राजस्थान से आपने कॉल लगाया है, तो पहले आप मुझे बता दीजिए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा कहीं प्यार ना हो जाए।
0: कहीं प्यार ना हो जाए से आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: इसमें गाना है दिन ताना वो बन्नों की चूड़ी, ऐसा कुछ गाना है।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, हम वो गाना ढूंढते हैं। तब तक आप मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं और राजस्थान में गर्मी के अभी कैसे हाल हैं?
1: जी मैडम, राजस्थान में गर्मी के बढ़िया हाल है, यहाँ गर्म हवा चल रही है और धूप भी काफी है और बारिश तो होती नहीं और मौसम बन जाता है, पर अंदर ज्यादा अंदर चल रहा है तो इसी थोड़ी सी परेशानी होती है मैडम। और कुछ
0: इस बार तो गर्मी ने इंदौर में भी लोगों के हाल कर रखे हैं बिल्कुल, और राजस्थान में तो और भी ज्यादा मुझे लगता है सब परेशान हो रहे होंगे।
1: हाँ जी मैडम, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे क्योंकि गर्मी इतनी पड़ जाती है और बिजली का भी संकट हो जाता है जब ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो और भी परेशानी आ जाती है मैडम।
0: सही कह रहे हैं, तो चलिए हम आपके इसी थोड़ी परेशानी में आपको खुश करते हैं क्योंकि हमें आपकी पसंद का गीत मिल चुका है फिल्म कहीं क्या प्यार ना हो जाए से।

0: चलिए श्रोताओं, हम कोशिश करते हैं एक आखिरी कॉलर से प्रोग्राम के अंत से पहले जुड़ने की। तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? हेलो,
1: आवाज आ रही है?
0: अब आ रही है जी। मुझे बताइए क्या नाम है आपका? आपकी आवाज बहुत कट रही है, तो अगर आपके आसपास में कहीं रेडियो चल रहा हो तो प्लीज उसे आप मतलब थोड़ा उसे दूर हो जाइए, वो ना फ्रीक्वेंसी की वजह से कई बार।
1: हाँ जी, मोबाइल का वॉल्यूम कम कर।
0: बीच बीच में आपकी आवाज।
1: हाँ जी, उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है
1: जी। बिल्कुल, मैं आकाशवाणी इंदौर का नियमित होता हूँ।
0: और यस, और पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: जी? फिल्म का नाम है गंगा यमुना सरस्वती।
0: गंगा यमुना सरस्वती, और गाने के बोल हैं साजन मेरा उस पार है। ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं ये गीत। तो महाकाल की नगरी से आपने हमें कॉल किया है प्रेम सिंह सिसोदिया जी। मुझे लग रहा है कि
1: और
0: आज
1: आकाशवाणी इंदौर का नियमित होता हूँ, और

चलिए श्रोताओं, अब हम आ गए हैं आज के युवाणी कार्यक्रम के अंत की ओर और वक्त आ गया है आपको उन दो प्रश्नों के उत्तर बताने का जो मैंने आपके कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से पूछे थे, जिसमें आज का पहला प्रश्न था कि विविध भारती सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, और इसका सही उत्तर है 1957। और आज का दूसरा प्रश्न था कि चंद्रयान 3 का लैंडर किस नाम से जाना जाता है, और इसका सही उत्तर है विक्रम। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे फोन इन कार्यक्रम के साथ शनिवार को ही। तब तक के सुनते रहिए युवाणी, और दीजिए अनुमति मुझे यानी कि जयती को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। युवा फिल्म का गीत सुनिए एआर रहमान और मधुश्री की आवाज में।
1: हुमा, हुमा, हुमा, हुमा।

मैं हूं ना फिल्म का गीत सुनिए, सोनू निगम, आफताब साबरी और हाशिम साबरी की आवाज़ में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं अनु मलिक।

रूप कुमार राठौड़ और श्रेया घोषाल को सुनिए फिल्म तुमसा नहीं देखा मैं। संगीत है नदीम श्रवण का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत, जिसका विषय है क्रांतिकारी उपकरण ड्रोन तकनीक का कृषि में योगदान।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम विकसित होता भारत में आपके साथ हूं मैं प्रीति जोशी। श्रोताओं, विकसित होता भारत विजन 2047 भारत सरकार का यह वह लक्ष्य है जब भारत को एक पूर्ण विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करना। विकसित भारत का यह विजन केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रगति का समग्र रूप है। तकनीकी दृष्टि से भारत को डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करना है और डिजिटल इंडिया का सपना 2047 तक हर गांव में स्मार्ट सुविधाओं को पहुंचाना है। इसी दिशा में ड्रोन योजना किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। क्रांतिकारी उपकरण ड्रोन तकनीक ने एक मैजिक कर दिया है कृषि के क्षेत्र में।

0: जी हाँ श्रोताओं, विकसित होता भारत के अंतर्गत क्रांतिकारी उपकरण ड्रोन की कृषि में क्या भूमिका है, आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मंदसौर के डीन एवं प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक रानड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्कार आपको।
2: सर नमस्कार। सर विकसित भारत विजन 2047 की हम बात कर रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपकरण ड्रोन की क्या भूमिका रहेगी, क्या ड्रोन भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा, आप क्या सोचते हैं?
1: जी आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की लगभग 70-80% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है और अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए कृषि आय का मुख्य स्रोत है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी कृषि उत्पादकता पर बहुत अधिक निर्भर करती है और कृषि के बढ़ते महत्व के बावजूद तकनीकी प्रगति के क्षेत्रों में अभी हम बहुत पीछे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और प्रतिकूल मौसम की स्थिति और अनियंत्रित कीटों के कारण फसल की विफलता भी आपने देखी होगी और यही मुख्य योगदानकर्ता भी रही है। और आप देखते हैं कि भारतीय किसान अब भी सिंचाई के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर करते हैं, ये अन्य कृषि पद्धतियों के लिए सदियों पुराने तरीकों का उपयोग करते हैं। इसलिए किसानों के अथक प्रयासों के बावजूद कभी कभी कृषि की उपज की गुणवत्ता मात्रा से समझौता किया जाता है और वैज्ञानिक कृषि में दिन प्रतिदिन नई नई तकनीक का विकास कर रहे हैं एवं नई नवीन किस्मों के बीज, कृषि को सरल बनाने के लिए नवीन उपकरणों की खोज, कृषि से संबंधित पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही कृषि को आसान बनाने वाली एक तकनीक है कृषि ड्रोन। यह भारत विकसित प्रोग्राम के लिए बहुत ही आवश्यक होगी और यह कृषि से जुड़े कार्यों को सरल करने के लिए वाले उपकरणों में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन जिन्हें UAV भी कहा जाता है और इनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में निगरानी के लिए किया जाता है। इनका उपयोग मुख्य रूप से खनन, निर्माण, सेना एवं अन्य जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। यह तकनीक भारत में अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, परंतु कई कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि यह किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध हो और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो। और ड्रोन कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। फसल की उपज में सुधार और टिड्डी नियंत्रण सहित क्षेत्रों में यह काफी लाभदायक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि बेहतर फसल उत्पादन के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। इसमें सिंचाई योजना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, मृदा की गुणवत्ता की जानकारी, कीटनाशकों के छिड़काव आदि में मदद मिल सकती है। ड्रोन के उपयोग से किसानों को उनकी फसलों के बारे में नियमित रूप से जानकारी मिल सकती है, इससे उन्हें निर्णय लेने में आसानी हो सकती है। इसके साथ ही समय और श्रम को भी बचाया जा सकता है। ड्रोन के उपयोग से चुनौतीपूर्ण तथा संक्रमित क्षेत्रों, लंबी फसलों और बिजली के लाइनों के नीचे कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जा सकता है। ड्रोन आंकड़ों के संग्रहण के साथ सर्वेक्षण का कार्य भी करता है, इससे तेजी से किसानों को सही निर्णय में मदद मिलती है। और इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कृषि ड्रोन उर्वरक, पानी, बीज और कीटनाशकों जैसे सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कृषि के कई आयामों में ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है और यही हम कह सकते हैं कि विकसित भारत की योजना में ड्रोन का एक महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है।
2: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है डॉक्टर साहब। पारंपरिक तरीके की तुलना में ड्रोन जो तकनीक है वो कितनी प्रभावी है?
1: जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रोन के जो कृषि में उपयोग है उसमें आप देखिए, आप ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्र में फसल की निगरानी, मृदा विश्लेषण, सिंचाई और कीट प्रबंधन सहित कई कार्यों में किया जा सकता है। तो मैंने बताया अभी पारंपरिक रूप से किसान भाई ऐसी पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें उनको काफी कठिनाई हो रही है। तो जैसा कि एक उदाहरण मैंने दिया, कीटनाशकों का छिड़काव समय पर नहीं कर पाता है, फसलों की निगरानी वह समय पर नहीं कर पाता है। और ये ड्रोन आने से ऐसी कई विधियां हैं जिनको वह, या समस्याएं हैं जिनको वह आसानी से हल कर सकता है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जैसे श्रमिकों की समस्या से निजात मिल सकती है, क्योंकि आप जानते हैं जब छिड़काव करने के लिए किसानों को मजदूरों की आवश्यकता होती है और उस समय काफी दिक्कतें आती है। ऐसे में ड्रोन का इस्तेमाल काफी फायदेमंद साबित होने वाला है और ड्रोन के जरिए कम समय में ज्यादा क्षेत्रों को आच्छादित किया जा सकता है, साथ ही मानव श्रम की समस्या से भी निजात मिलती है। और आप जैसा कि आप जानते हैं अगर मानव कोई कार्य करता है तो उसमें मानवीय भूल हो सकती है, पर ड्रोन से अगर कोई कार्य किया जाए तो बेहतर दक्षता मिल सकती है। ड्रोन में कोई परिचालन देरी नहीं होती है, यह मानव श्रम की गति से कई गुना अधिक गति से कुशलता से आच्छादित कर सकते हैं। यह किसानों को आंकड़ों को संग्रहित करने और फसलों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने में सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार फसलों में होने वाले रोग व्याधियों की शीघ्र पहचान करने में भी मदद मिल सकती है। आप जानते हैं हमेशा किसान यह बात करता है कि फसल की पैदावार में कमी हो रही है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर ड्रोन का उपयोग किया जाए तो फसल की पैदावार में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि फसल स्वास्थ्य पर आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। इससे किसानों को उन क्षेत्रों की पहचान करने के उपरांत भूमि का समतलीकरण करने में भी सहायता मिलेगी। आप देखिए उबड़ खाबड़ जमीन होती है, तो कौन सा क्षेत्र लेवल करने की आवश्यकता है या समतलीकरण की आवश्यकता है, ये ड्रोन से पता

0: लगाया जा सकता है और फसलों में होने वाली समस्याओं को चिन्हित करते हुए निवारण करने में भी इसका योगदान होगा। और इसी प्रकार किसान अपनी फसल की पैदावार में सुधार कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और हमेशा किसान आय की बात करता है तो कहा जाता है कि अभी अधिक लागत लगती है, इस कारण उसकी कम आय होती है। पर ड्रोन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कम लागत लगेगी। ड्रोन फसल में कीट व्याधियों की पहचान कर प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक उर्वरक एवं रसायनों का प्रयोग कर लागत में कमी कर सकते हैं। अभी आप जानते हैं किसान भाई समान रूप से हर क्षेत्र में उर्वरक और रसायनों का इस्तेमाल करता है, पर ड्रोन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि किन क्षेत्रों में उर्वरक में कमी है या वहां पर रसायनों का प्रयोग कम किया जाना है। तो ड्रोन मशीनों की तुलना में अधिक शुद्धता के साथ खेतों को जांच सकता है और यह फसलों में सही मात्रा एवं कम लागत में कीटनाशकों और उर्वरकों का भी तेजी से छिड़काव कर सकता है। और इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रोन उच्च रिजोल्यूशन वाली फोटो और आंकड़ों को संग्रहित करता है। इससे किसानों को उनकी फसलों का विस्तृत दृश्य मिलता है। इससे वह खेती के हर भूमि के समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान कर उसमें आवश्यक उपचार कर सकता है। इस प्रकार ड्रोन से क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लगी फसलों का सही मूल्यांकन करने में भी सहायक सिद्ध होता है। और एक आप जानते हैं फसलों में नुकसान भी काफी होता है तो सुरक्षा भी होनी आवश्यक है। और ड्रोन अगर आप संचालित करेंगे तो ड्रोन का उपयोग करने से ये प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा अगर संचालित किए जाते हैं तो इनके दुरुपयोग की भी कोई संभावना नहीं होगी और कोई आशंका नहीं होगी। और किसानों द्वारा पारंपरिक तरीकों से कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव करने पर कहीं न कहीं मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं दवाइयों का छिड़काव या रसायनों का छिड़काव जब किया जाता है तो वह हवा से उड़कर मानव के शरीर में प्रवेश कर सकता है और उसके स्वास्थ्य को प्रतिकूल बना सकता है। तो ड्रोन के माध्यम से इस समस्या का भी ध्यान पाया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं फसल में पानी की बचत करना भी अत्यंत आवश्यक है।
1: बिल्कुल।
0: पारंपरिक छिड़काव की विधियों में अगर हम कृषि ड्रोन अल्ट्रा लो वॉल्यूम छिड़काव तकनीक का उपयोग करते हैं तो इसमें पानी की बचत होती है। और हर बूंद का आप जानते हैं कि हर बूंद को अगर बचाया जाए तो उससे अधिक पैदावार निकाली जा सकती है। तो ये चीज ड्रोन के कारण संभव हो पाएगी। और आप जानते हैं कि ड्रोन का रखरखाव भी बहुत आसान होता है।
1: जी बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने कहा है कि ड्रोन से जो हम सिंचाई करते हैं या दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो इससे हम मान सकते हैं कि छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनको ड्रोन योजना से काफी लाभ मिल रहा है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि ड्रोन तकनीक का उपयोग करना विशेष रूप से सरकार की सब्सिडी योजनाओं के साथ और खेती को अधिक किफायती और उत्पादक बना सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए ड्रोन के कई लाभ हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें लागत प्रभावी रूप से कम की जा सकती है, कम उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग होता है, समय की बचत मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य सुरक्षा भी आती है, सटीक खेती भी हम इसके कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि छोटे और बड़े किसानों के लिए, छोटे किसान खास तौर से छोटे किसानों के लिए या छोटे खेतों के लिए ऐसे ड्रोन भी निकाले गए हैं कि जिनमें 10 लीटर टैंक वाले ड्रोन भी उपलब्ध हैं और इसकी कीमत लगभग 3 से 5 लाख रुपए होती है। मतलब सस्ती कीमत में भी ड्रोन मिल सकते हैं। और इसी प्रकार एंट्री लेवल ड्रोन भी जो आते हैं जो 50,000 रुपए से भी प्रारंभ होते हैं और फसल की निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि महंगे ड्रोन खरीदने के बजाय छोटे और सीमांत किसान FPO या नमो ड्रोन दीदी जैसे समूहों के माध्यम से या कस्टम हायरिंग के माध्यम से ड्रोन सेवा का विकल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो किसानों को, छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है और उसका उपयोग करके किसान भाइयों को बहुत फायदा पहुंच सकता है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत ही आवश्यक और जरूरी जानकारी आप दे रहे हैं। किसानों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है तो किस तरह से वो कार्य किया जाता है?
0: जी इसके लिए देखिए किसानों के लिए खास तौर से कई संस्थान ऐसे विकसित किए गए हैं जहां पर किसानों को ड्रोन की जानकारी दी जाती है, किस प्रकार से उसका संचालन किया जाए वो उसके बारे में बताया जाता है। तो इसके लिए कई ऐसे रिसर्च अनुसंधान है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा ग्वालियर में माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहां पर इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर आजकल बुधनी में है, हिसार में है, यहाँ पर भी ड्रोन के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जहाँ पर ये ड्रोन किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है और किस प्रकार से उसको रखरखाव किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। किसान ड्रोन जो है और ये बहुत अच्छी विशेषता है इसकी और इसका मुख्य

0: 22 में किया गया था, जिसके माध्यम से किसानों को ड्रोन, सटीक छिड़काव, फसल निगरानी और खेत से बाजार तक त्वरित संपर्क के लिए खेती को आधुनिक बनाने वाले कई ड्रोन बनाए गए थे, जिसकी जानकारी किसानों को दी गई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किसान ड्रोन की विशेषताएं यह होती है कि यह मानव रहित हवाई वाहन है, जिसमें विशेष रूप से कृषि कार्यों, छिड़काव, फसल की निगरानी, खेत की मैपिंग के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कीटनाशकों और तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए रासायनिक टैंक से सुचारित होते हैं और लगभग 15 मिनट में ये एक एकड़ भूमि पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे श्रम और समय की बचत होती है। और सबसे मुख्य बात यह है कि यह एक समान और नियंत्रित छिड़काव करता है, जिससे रासायनिक अपशिष्ट भी कम होता है और इसके कारण निश्चित ही आप समझ सकते हैं कि लागत कम आती है। और सटीक फील्ड कवरेज के लिए इसमें GPS आधारित नेविगेशन का उपयोग करके संचालित किया जाता है।
1: जी, जी, जी।
0: और आप जानते हैं कि हम इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई योजना बनाई जाती है तो उसको सफल बनाया जा सकता है। और यह स्वचालित उड़ान पथों और पूर्व निर्धारित मार्गों का समर्थन करता है, मतलब जो आप निश्चित कर लेंगे किस मार्ग पर इसको चलना है तो उसी मार्ग पर इसको चलाया जाएगा। और जैसा कि सीधे हम रासायनिक पदार्थों के संपर्क में नहीं आते, जिससे सुरक्षा में विकास होता है और भूमि मानचित्र और अभिलेखों के डिजिटलीकरण में भी इसकी सहायता मिलती है। और आप जानते हैं कि किसान ड्रोन ने सटीक खेती को बढ़ावा देकर मानवीय निर्भरता को कम करके भारतीय कृषि में एक तकनीकी बदलाव लाया है।
1: बिल्कुल, तकनीकी बदलाव की आप बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ये सरकार का कदम है कि ड्रोन योजना उन्होंने लागू करी है। तो क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी में युवाओं को भी शामिल किया जा रहा है, उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है या रोजगार की क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में?
0: जी जी बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इसमें प्रकार से व्यवस्था की जा रही है कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जानकारी मिले, युवाओं को जानकारी मिले, खासतौर से जो हमारे कृषि महाविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं।
1: हाँ।
0: वो इस तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करें और इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करें और वैज्ञानिक आधार पर किसानों के खेतों पर इसको किस प्रकार से और ज्यादा प्रचलित किया जा सकता है, इसके बारे में ये बात कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। हर संस्थान को कहा गया है कि ऐसे जो इच्छुक उम्मीदवार हैं या छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको प्रशिक्षण संस्था में ऐसी प्रकार से योजना बनाकर या प्रशिक्षण दिलवाया जाए जिससे वो स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सकता है और इसी को वो अपना सकते हैं। आपने कृषि ड्रोन दीदी के बारे में सुना होगा।
1: जी बिल्कुल, हम इस बात पे भी आना चाह रहे थे कि कृषि ड्रोन दीदी जो योजना है वो किस तरह से काम करती है।
0: जी, इसमें देखिए खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, क्योंकि जो कृषि कार्य से थोड़ा जानकारी रखती है और उनको रोजमर्रा के जीवन में क्या समस्याएं आती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी होती है, तो इस प्रकार से ऐसी महिलाओं का चयन किया गया है कि जो ड्रोन के माध्यम से ये कार्य संचालित कर सकती है, कृषि क्रियाओं को कम कर सकती है, प्रभावी ढंग से उसकी समस्याओं का निराकरण करके कृषि को और उपयोगी बना सकती है। तो ऐसी दीदियों का चयन किया जा रहा है या महिलाओं का चयन किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से उसकी योजना भी बनाई जाती है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका मुख्य उद्देश्य है कि वो प्रशिक्षण प्राप्त करें और उससे स्वरोजगार भी हासिल करें।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि भविष्य में महिलाओं के लिए इस योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और काफी ज्यादा जो युवा हैं वो भी क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, चाहे वो ड्रोन पायलट बन सकते हैं या खेती और डिलीवरी की जॉब जो है इसमें भी काफी कुछ अपॉर्चुनिटी है।
0: आपने और आपको बताना चाहूंगा मैडम कि ड्रोन शक्ति करके एक पहल भारत सरकार द्वारा की गई है, जिसमें ड्रोन एज ए सर्विस, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सुविधा प्रदान करना और कुशल मानव संसाधन विकसित करने के लिए इसको शुरू किया गया है। यह घरेलू ड्रोन निर्माण, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने और ड्रोन की कीमतों को कम करने के लिए एक योजना बनाई गई है और इसका उद्देश्य यह है कि यह स्टार्टअप्स को केवल ड्रोन बेचने के बजाय ड्रोन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे कृषि, खनन और बुनियादी ढांचों जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसी प्रकार इस ड्रोन शक्ति के अंतर कौशल विकास भी किया जा रहा है, कुशल कार्यबल, जैसे आपने युवाओं की बात की थी, ड्रोन दीदी की बात की थी, तो इनको प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक, ऑनलाइन ड्रोन अनुमतियों और यातायात प्रबंधन के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को एकीकृत

0: किया गया है। इसी प्रकार नवाचार और उद्यमिता को विकास बढ़ावा देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण ड्रोन घटकों के निर्माण का पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नमोद्रण दीदी के बारे में आपको मैं बताया कि इनको एक स्वयं संचार सहायता समूह, जिसको HSG हम कहते हैं, उसके माध्यम से इनको दीदियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। और इस प्रकार आप देखेंगे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, युवाओं और महिलाओं का चयन किया जा रहा है, तो इसमें रोजगार सृजन भी हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ड्रोन स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहित करता है और ड्रोन पायलटों, तकनीशियों और डेटा विश्लेषकों के लिए रोजगार के लिए अवसर सृजित करता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि स्वदेशी विनिर्माण, इसका उद्देश्य लागत को कम करना और घटकों के लिए एक मजबूत घरेलू आपूर्तिकर्ता परिस्थिति को तंत्र का निर्माण करना है। और कृषि में रूपांतरण कैसे करेंगे आप, कि इसका उपयोग जो घरेलू हमारे स्वदेशी ड्रोन रहेंगे, पोषक तत्वों और कीटनाशकों के छिड़काव जैसी सटीक कृषि विधियों के माध्यम से खेती में दक्षता को बढ़ाएंगे।
1: क्या बात है,
0: इस प्रकार की बात है जी।
1: ये बहुत ही अच्छी चीज है, ड्रोन तकनीक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और लोग इसमें आगे आ रहे हैं, किसान भाई हमारे आगे आ रहे हैं और नमो दीदी ड्रोन योजना भी बहुत ही अच्छी है जो महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। और वाकई में विकसित होता भारत के अंतर्गत इन सभी चीजों का उपयोग हो रहा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ हम आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में कृषि में ड्रोन जो तकनीक है उसका भविष्य कैसा है, आप क्या सोचते हैं?
0: जी जी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैडम ये इसमें चुनौतियां क्या है। अगर हम चुनौतियों को अगर निराकरण कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है। और चुनौतियां देखिए आप क्या क्या आती है कि उच्च प्रारंभिक लागत, ये कृषि ड्रोन व्यक्तिगत किसानों के लिए बहुत महंगे होते हैं और लागत में खरीद मूल, बैटरी, अतिरिक्त पुर्जे और रखरखाव शामिल है और छोटे और सीमांत किसान सब्सिडी के बिना इन्हें वहन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपने युवाओं महिलाओं की बात जरूर की है पर अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित जागरूकता है, कई किसान ड्रोन के फायदों और संचालन के बारे में अनजान है। प्रदर्शन परियोजनाओं की कमी से कृषि के ऊपर इनका भरोसा कम होता है और इसलिए कौशल और प्रशिक्षण अंतर जो है उसको पूरा करना जरूर होगा। ड्रोन उड़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान और प्रमाणित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ग्रामीण युवाओं को लाइसेंस प्राप्त ड्रोन पायलट बनने के लिए सुनियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसी प्रकार इसकी नियमावली भी या नियामक या अनुपालन मुद्दे भी ऐसे होने चाहिए जिसका आसानी से पालन किया जा सके, क्योंकि कई जगह ड्रोन के उपयोग के लिए विमानन नियमों और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके लिए अनुमतियां प्राप्त करना और उसका पंजीकरण करना ये चीज होती है। और कुछ और समस्याएं जो आती है, कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना संबंधी समस्याएं आती है, क्योंकि कई क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी होती है, उससे भी हमको निजात पाना होगा। और डिजिटल साक्षरता की कमी से ड्रोन डेटा के प्रभावी उपयोग को अभी सीमित करता है। और आपने देखा होगा बैटरी लाइफ और तकनीकी सीमाएं, क्योंकि ये ड्रोन बैटरी से चलाए जाते हैं तो सीमित बैटरी बैकअप के कारण प्रति उड़ान कवरेज क्षेत्र सीमित हो जाता है और कृषि के चरम मौसम के दौरान तकनीकी खराबी के कारण परिचालन में देरी होती है। मौसम की निर्भरता पर कृषि आधारित है, इसी प्रकार मौसम की निर्भरता पर ड्रोन का संचालन भी होगा। तेज हवाएं, बारिश या अत्यधिक तापमान ड्रोन संचालन को बाधित कर सकते हैं और मौसम की अनिश्चितता छिड़काव संबंधी गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है।
1: जी।
0: और आप जानते हैं कि आय अनिश्चितता, अगर आय हमको रेगुलर मिलेगी या समान रूप से हर समय मिलती रहेगी तो हम निश्चित ही इसकी ओर बढ़ेंगे।
1: सभी चुनौतियों का अगर हम सामना करते हैं तो निश्चित रूप से हम विकास की ओर अग्रसर होंगे।
0: जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ड्रोन तकनीक अगर आती है तो ये भारतीय कृषि को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है और ड्रोन सटीक खेती, पर्यावरण सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम 2047 के परिदृश्य में बात करें तो सटीक कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव होना चाहिए, तो ड्रोन का उपयोग कीटनाशकों, फफूंद नाशकों और उर्वरकों के समान छिड़काव के लिए किया जा सकता है, जिससे 50 से 60 गुना तेज काम हो सकता है। एक एकड़ में मैंने आपको पहले भी बताया 15 से 20 मिनट में छिड़काव संभव है, जो पारंपरिक तुलना में बहुत कम है। पानी और रसायनों की बचत करता है, फसल निगरानी हम कर सकते हैं, स्वास्थ्य में, किसानों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इसी प्रकार हम पशुधन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास पशुधन है तो कहाँ कहाँ जा रहा है उस पर निगरानी रख सकते हैं।
1: यानी कि ये कह सकते हैं कि ड्रोन जो तकनीक है वो निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी तकनीक है आज के लिए।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल
1: जी जी। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत ही अच्छी बातचीत हुई, ड्रोन तकनीक के बारे में आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। यहाँ हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि कोई गीत अगर आपकी पसंद का हो तो वो जरूर बताएं जो आप

0: बहुत पसंद हो।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि तो देखिए ड्रोन की अगर आप बात कर रहे थे तो निश्चित तौर से हम नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। तो मुझे इस अवसर पर मुझे ये गीत सुनना है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में रखेंगे हम मिलकर नई कहानी।
0: बहुत ही प्यारा गीत आपने पसंद किया है, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

और श्रोताओं, अब बात करते हैं लखपति दीदी योजना की, जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनकी आय बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए बनाई गई है। यह योजना महिलाओं को इस स्तर तक सक्षम बनाती है कि वे कम से कम 1 लाख रुपए सालाना आय अर्जित कर सकें। इस योजना से कई महिलाओं को लाभ मिल रहा है। महिलाएं खुद का व्यवसाय शुरू कर रही हैं, परिवार की आय बढ़ रही है, गांवों में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं और साथ ही महिलाओं का आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान भी बढ़ रहा है और वे आज सक्षम बन रही हैं, अपने हौसलों से आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। प्रीति जोशी को दे अनुमति, नमस्कार।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विकसित भारत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में पेश है जय श्री गुप्ता का गाया ये भजन। रचना तुलसीदास जी की है।

0: सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे जय श्री गुप्ता को। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में पेश है कालूराम बामनिया और साथियों के गाए मालवी नुरगुणी लोक भजन।
1: आज कबीर कमाई आ बनी न कबहू न निष्फल जाई हर सात समुद्र

0: लोक संगीत में आज आप सुन रहे हैं कालूराम भामनिया और साथियों के गाए मालवी निर्गुणी लोक भजन। लीजिए सुनिए एक और मालवी निर्गुणी लोक भजन। कलाकार हैं कालूराम भामनिया और साथी।
1: आज कबीर सोता क्या करे न

0: लोक संगीत में आज आप सुन रहे थे कालूराम बामनिया और साथियों के गाय मालवी लोकगीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7 बजने को हैं समाचार, कुछ ही पलों में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्नपत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती

0: पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास नवाचार आरडीआई निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:05 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए अब आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 से कार्यक्रम खेती गृहस्थी में डॉक्टर अंकित पांडे से भेंटवार्ता होगी। विषय है परिरक्षित फल सब्जियों का उपयोग व टिकाऊपन। इसके अलावा डॉक्टर बबली की वार्ता ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द फसलों में प्रमुख रोग व कीट समेकित प्रबंधन भी होगी। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुनिएगा 8:15 से। चित्र गीत 9:15 से सुने जा सकते हैं। राष्ट्रीय चित्र पत्रिका चित्र भारती रात 9:30 से और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 से हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको हमारे कल अर्थात रविवार 17 मई को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल सुबह 6:05 से सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 से खेती की बातें में फल एवं सब्जियों के परिरक्षण के बारे में बताया जाएगा। श्री रामचरित मानस गान का पाठ होगा 6:40 से। 7:20 से कार्यक्रम योग निरोग में गर्मी और लू से बचने के लिए प्राणायाम और योगासन बताए जाएंगे। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुनहरे पल में 7:35 से। 8:30 से बच्चों के लिए कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे प्रसारित किया जाएगा। 9 से लोक संगीत में सुनिएगा जय सिंह दायमा के गाए लोकगीत। 9:15 से सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई गजलें। 9:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा निखिल बड़ोदिया के सितार पर बजाए राग परमेश्वरी का। 10:05 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेल्प एमएच हॉटलाइन में हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11 से फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। 12:02 से फिल्म संगीत। 12:30 से संग्रहालय से 1 से महिला कार्यक्रम। 1:30 से लोक संगीत। 1:45 से सुगम संगीत। 2 से फिल्म संगीत और 2:30 से बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। तो ये थे हमारी कल दिन की सभा के आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। हमारी कल की सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के साथ संध्या 5।

0: जैसे 5:45 से सुनिएगा फिल्म संगीत, 6:30 से सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई गजलें, 6:45 से लोक संगीत में साधना उपाध्याय और साथियों के गाए लोकगीत होंगे, 7:20 से कार्यक्रम खेती गृहस्थी में डॉक्टर आश्रुति केशरवानी से भेंटवार्ता होगी, विषय है फसलों में मृदा जनित रोग और उनके प्रबंधन, 8:15 से कार्यक्रम डगर विकास की हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, फिल्म संगीत सुनिएगा 8:30 से, चित्रगीत 9:15 से सुने जा सकते हैं, नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 से और अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा रात 10 से हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थे हमारे कल अर्थात रविवार 17 मई को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की न्यायपालिका को 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना होगा, कहा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हैग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा सिर्फ भारत में हो रहे हैं।
1: आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है।
0: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों

0: लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: खास करके आज के समय में जब एफआईआर से लेकर के बीच की बहुत सारी कड़ी होती है, फॉरेंसिक लैब से लेकर के कई सारे प्रकार के तंत्र रहते हैं, उन सब के आधार पर हम त्वरित गति से जो जिसकी आवश्यकता उसको लाभ मिले उस तक मदद पहुंचाए, क्योंकि न्याय का मतलब ही है विलंब से छुट्टी, न्याय का मतलब ही है अन्याय से मुक्ति।
0: शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि डेंगू बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता, जागरूकता और सतर्कता बहुत जरूरी है। स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन कर मरीजों की निशुल्क डेंगू और मलेरिया की जांच की गई। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वागदेवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। धार जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने कहा कि शहर में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं।
3: शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, आम जनता अपना रूटीन वर्क रेगुलर जो रूटीन वर्क कार्य करे वो कर सके, इस प्रकार का कोई भय ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लगभग 1000 का फोर्स हमें उपलब्ध कराया है जिसको विभिन्न फिक्स पैकेट और सेंसिटिव एरियाज में लगाया गया है।
4: सीसीटीवी कैमरे
3: देखिए, जैसे कि सीसीटीवी सर्वेलेंस के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की नज़र बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि या कोई भी इस पर पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
0: राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। वहीं डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्णा जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला द्वारा सागर जिले के खुरई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। बच्चों में मानसिक क्षमता, स्मरण शक्ति और ब्रेन एक्सेस कौशल हेतु आगरमालवा में 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। खंडवा में डोडवाली अमावस्या आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सीहोर के बुधनी सिविल अस्पताल में पोषण टोकरी वितरण कार्यक्रम किया और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। शिवपुरी कलेक्टर ने आज बिछोर में सनघट्टा सिंचाई परियोजना अंतर्गत सनघट्टा डैम का निरीक्षण किया। नीमच जिले में आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर जमुनिया कला के औषधालय परिसर में योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

गुना जिले में किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के विकास खंडों में कृषि रथ के माध्यम से जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज किया गया। मंडला में आयोजित आदि उत्सव के दूसरे दिन रामनगर में जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली विरासत की छटा देखने को मिली। संपर्क अभियान 2026 के अंतर्गत अशोकनगर जिले में 11 स्थानों पर विद्युत समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बिरना क प्रियंका की राम राम। भाई बिरना, अक्सर खेती की व्यस्तताना का बीच में हम अपना भविष्य की योजना बनानो तो भूली जाए। किसान मना खेत खलिहान में अन्न उगैन पूरा देश को पेट भर, मौसम की परवाह किए बगैर दिन रात खेत ना में पसीनो बहाए। पर एक बात यह भी है कि भाई वक्त एक जसो नहीं रहे, जब उम्र ढली जाए तब कहीं होएगो। बुढ़ापा में रुपया पैसा सरु कोई का भी आगा हाथ नहीं फैलाना पड़ा, उकी अपन ने कई तैयारी करी है। ये प्रश्न ना कभी कभी तो दिमाग में आवत सही। इन्हीं चिंता का दूर करना सरु भारत सरकार की एक योजना है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो भाई बहना, आखिर यह किसान मानधन योजना कई है? तो एक सीधा शब्द में अपन या तो यूं कहना कि भाई छोटा जो जो सीमांत किसान भाई बहना है उनका स्वरूप बनाई गई एक सरकारी पेंशन योजना है। इन्हीं योजना में 60 वर्ष की आयु पूरी होना पर लाभार्थी का हर महीना 3,000 रुपया की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिला। किसान भाई बहना, जितो मासिक अंशदान जमा करा पण शासन भी उतनी ही राशि किसान का पेंशन फंड में जमा करा। यदि किसी कारणवश जो लाभार्थी है उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका जो पति है या फिर पत्नी है उसका पेंशन का रूप में 50% पारिवारिक पेंशन का रूप में मिला। भाई बहना, आवेदन का समय किसान भाई बहन की उम्र जो है वह अपना 18 से 40 वर्ष का बीच में होनी चाहिए और अधिकतम खेती कितनी होनी चाहिए तो का सरु जरूरी है कि भाई जो किसान भाई या बहन है उनका कम से कम 2 हेक्टेयर तक की जो कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। यह योजना उना किसान भाई बहना सरु है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया तक है। अब मन में यो प्रश्न आ रही हो कि भाई कितो अंशदान करना पड़ेगा अपना हर महीना। तो यदि तुम 18 वर्ष की आयु से जुड़नो चाहिए रहा है तो उसका 55 रुपया देना पड़ेगा, और जबकि 40 वर्ष की आयु में जुड़ने वाला कोई किसान भाई है या बहन है तो उनका 200 रुपया तक अंशदान जमा करना पड़ेगा। अब फिर सवाल है कि भाई यह सब जानकारी तो अपना मिली गई पर पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन अपन कैसे करावा? तो उका सरो तम अपना जो नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जैन

आधार कार्ड और बैंक पासबुक का माध्यम से पंजीकरण कर ही सकता है, या फिर पात्र जो किसान है वो आधिकारिक मानधन पोर्टल का माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर ही सकते है। तो भाई बहना देर की नहीं बात की, समय रहता अपनों और अपना परिवार को भविष्य सुरक्षित कर लो, ताकि अपना बुढ़ापा में कोई का भी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। बात अपन और भी नरी सारे करांगा, पर कार्यक्रम में अपन सुनीला एक लोकगीत जिक गायो है भाई गोविंद सिंह धनगढ़ ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: भाई वरना संदेश का पहला पढ़ना भाई गोविंद सिंह धनगर को गायो प्यारो सो लोकगीत सुनो और लोक संगीत सुनिए। सच में जैसे मन की सगली थकान ही मिटी जाए। संगीत हमारी संस्कृति को वो हिस्सों है जो हमारे मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना सिखाए। बात अपन अपनी खेती बाड़ी की और भी करा और कार्यक्रम में सुना अपन भेंट वार्ता जिको विषय है परिरक्षित फल सब्जी ना को उपयोग और टिकाऊपन। डॉक्टर अंकित पांडे उद्यानिकी सहायक उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से जानकारी ली रही है बेन तुलसा दरगैया। तो सुना उनकी यह चर्चा।
3: किसान भाई फल सब्जी न जिना मौसम आवज वो मैं तो हम उनको उपयोग हम कर ही लेवान, पर कभी ज्यादा समय तक यानी बिना मौसम का भी फल सब्जी हमको इस्तेमाल करनू तो हमको परिरक्षित करी न रखनू पड़ेगा। एकासी हम उनको उपयोग जब भी करी सकान जब वो हमारा पास उपलब्ध नहीं है तो किस प्रकार से हम उनको परिरक्षण करा ये सब जानकारी देना का लेना आज हमारा साथ फोन का माध्यम से जुड़िया डॉक्टर अंकित पांडे उद्यानिकी सहायक उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर सी। तो डॉक्टर अंकित पांडे जी कार्यक्रम में आपको स्वागत छे। राम राम।
4: राम राम।
3: पांडे जी जसो की हमारो आज को विषय छे परिरक्षित फल सब्जी न को उपयोग न ओको टिकाऊपन। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि परिरक्षण का ही हो न किस प्रकार से हम करी सका।
4: जी मैम, परिरक्षित मतलब कि किसी भी फल और सब्जी को लंबे समय तक बचाने के लिए फल सब्जी जैसे हम अगर कच्ची सब्जियां हैं तो उनको लंबे समय तक टिकाने के लिए उनके परिरक्षण करके मतलब उनको लंबे समय तक हम उपयोग कैसे कर सकें, क्योंकि फल सब्जी एक दो दिन में खराब हो जाती है, उसके बाद उसको परिरक्षित करके हम लंबे समय तक संरक्षित करके अपने खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जी, और फल और सब्जियों को परिरक्षित उत्पादों को आपको मालूम होगा कि डिब्बे हैं, बोतलें हैं और सील बंद करके हम एक एक दो वर्ष या इससे भी अधिक समय तक खाने की योग्य अवस्था में रखा जा सकता है।
3: अच्छा।
4: लेकिन डिब्बा अथवा बोतल खोल लेने के बाद इन्हें अधिक दिनों तक खाने योग्य अवस्था में नहीं रखा जा सकता। कुछ उत्पादों को डिब्बे अथवा बोतल खोलने के बाद तुरंत प्रयोग कर लिया जाता है जबकि कुछ को 15 या 20 दिन इससे अधिक समय तक प्रयोग किया जा सकता है।
3: अच्छा
4: जी, और हम इसमें अलग अलग उत्पाद हैं जैसे जैम जेली और मार्मलेंड है तो इसका उपयोग हम और टिकाऊपन के लिए हम इनको इनका उपयोग जो मैं बता रहा हूँ कि डबल रोटी हो गया, चपाती हो गया, पराठे के साथ इनको उपयोग कर सकते हैं जैम जेली मार्मलेंड। इनकी बोतल खोलने के बाद हम 10-15 दिन तक इनको खाने योग्य अवस्था में रख सकते हैं। इन्हें निकालने के लिए गीला चम्मच नहीं डालना चाहिए।
3: अच्छा।
4: वर्षा हाँ, क्योंकि अगर इनमें गीला चम्मच डाला गया तो उसमें फफूंदी आने की संभावना हो सकती है।
3: जब भी अपन का अचार निकाल लो जी मुरब्बो निकाल लो तो कम सूखो चम्मच डाला।
4: जी जी जी जी। और वर्षा ऋतु में इनको विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है कि जल्दी फफूंदी लगती है और सीलबंद अवस्था में कम तापमान पे भंडार करने पर 3 या 4 वर्ष तक भी जैम जेली मार्मलेंड खराब नहीं होते।
3: अच्छा।
4: तो ये परिरक्षित पदार्थों की एक विशेषता हो गई। उसके अतिरिक्त जैसे हम डिब्बा बंद फल हैं तो डिब्बा खोलने के बाद डिब्बा बंद फल की फांकों को तुरंत उपयोग कर लेना चाहिए। इसमें फल की सुगंध स्वाद तथा पोषक तत्व होते हैं। बंद डिब्बों में भरा जो फल है वो कई वर्षों तक खाने योग्य रह सकता है और सब्जियों में भी ऐसा ही है। सब्जियों में हम डिब्बा खोलने के बाद एक उबाल आने तक इनको पका लेना आवश्यक समझना किसान भाइयों को चाहिए। पकाने के बाद इनको तुरंत उपयोग कर लेना चाहिए। बंद डिब्बों में भरा पदार्थ कई वर्षों तक खाने योग्य अवस्था में रहता है लेकिन इनका भंडारण कम तापमान पर होना चाहिए। तो जो भी डिब्बा बंद फल सब्जी है इनमें विशेष रूप से हमको तापमान कम तापमान में इनको रखना चाहिए फ्रीजर्स में। उसके बाद जैसे हमको खाना है निकालना है तो उसके बाद यदि हम निकालते हैं तो उसके बाद हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सूखी चम्मच का उपयोग करके इनको खाने में उपयोग होना चाहिए। और जैसे सिरप हो गया, शरबत जिसको हम बोलते हैं, तो इनको प्रयोग में लाने के लिए एक भाग शरबत में 4-5 भाग पानी मिलाकर स्क्वैश की भांति प्रयोग करना चाहिए। बोतल खोलने के बाद ये 15 से 20 दिन तक खाने योग्य अवस्था में रहते हैं।
3: मतलब अपन अगर कोई भी उसकी बोतल खोली ली तो वो काफी ज्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं कर सकता, खराब होने लगी जाए जो।
4: हाँ इसमें मैडम जो होता है कि 15 से 20 दिन का समय तो रहता ही है, लेकिन इसके स्टोरेज पे हमको विशेष रूप से जो संग्रहण होता है, संग्रहण में हमको फ्रिज का इस्तेमाल करना चाहिए, डीप फ्रिज का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हमारे पारंपरिक चीजें हैं जैसे चटनी हो गई, तो चटनी में जब हमको मालूम है कि इसको चपाती और पराठे के साथ प्रयोग करते हैं, तो चटनी में चपाती और पराठे के साथ इनको उपयोग करते हैं, तो हमको मालूम है कि सूखी लहसुन की चटनी कई दिनों तक खराब नहीं होती। उसके बाद लहसुन की चटनी हम अगर सूखी बनाते हैं, उसके अलावा गीली चटनी भी बनाते हैं, तो गीली चटनी में हमको मालूम है कि सरसों का तेल या अन्य खाद्य पदार्थ हम का उपयोग करते हैं, जैसे पानी वाला अचार है, तो पानी वाला अचार भी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और सुखाए हुए उत्पाद आजकल क्या है कि जो सबसे ज्यादा डिमांड में चल रहे हैं सुखाए हुए उत्पाद, अभी आपको मालूम होगा तो जो बड़े बड़े मॉल हो गए या छोटे गांव में भी अब जो है ड्राई फार्म में कैंडी, ड्राई फार्म में उसके फ्रूट जो है, यदि हमको 12 महीने को खाना है तो 12 महीने के खाने के हिसाब से हमको ऑफ सीजन में भी, तो आपको मालूम होगा कि आम की फांके मिल जाती है, आम के सूखे आम के पापड़ मिल जाते हैं, और कई बार आपको कीवी सूखी हुई मिल जाती है, कीवी फ्रूट जो अभी प्रचलन में है। ऐसे ही सारे फ्रूट्स को या सारे फलों को 12 ही महीने खाने के लिए, सीजन के अलावा भी खाने के लिए इनको सूखे हुए उत्पादों के रूप में, डिब्बा बंद उत्पादों में इनको हम देखते हैं, तो वो लंबे समय तक परिरक्षित पदार्थ के उपयोग में कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुरब्बा, जैसे हमको मालूम है कि गाढ़ी चाशनी में डूबा रहता है, और वह फल का टुकड़ा निकालने के बाद बोतल को तुरंत ढक्कन भी लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि घर में लापरवाही पूर्वक किसान या गृहिणी या महिलाएं हम देखते हैं कि एक लापरवाही हो जाती है, तो वो ढक्कन खुला छोड़ दे, ढक्कन खुला होने की कंडीशन में यदि आसपास कहीं फफूंद होगी, या किचन में हम जानते हैं कि एक नमी की अवस्था रहती है किचन के प्लेटफॉर्म या आसपास की स्थिति में, तो वो फफूंद अगर अंदर चली गई तो वो जानलेवा भी हो सकती है, वो एक किसान या गृहणियों के लिए उससे हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो जाए, उल्टी दस्त और अन्य विकार भी मनुष्य को हो सकते हैं जिससे वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए डिब्बा बंद पदार्थों का उपयोग लंबे समय तक करने के लिए हमको डिब्बों को बंद भी रखना चाहिए, उनको कम तापमान पर उपयोग करना चाहिए, और अचार मुरब्बा या अन्य ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें हमको लगता है कि ये लंबे समय तक परिरक्षित रहते तो हैं, लेकिन इनको उपयोग के समय सावधानी यह करना चाहिए कि इनको तुरंत फिर हमको बंद अवस्था में करना चाहिए। और हर चीज हर जगह नहीं हम उपयोग कर सकते हैं, फ्रिज में रखने के लिए जेम जेली मार्बल एंड मुरब्बा हम फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन अचार को बाहर ही रखना है। अचार ऐसा नहीं हो कि आप फ्रिज में रख दें गृहिणी या किसान भाई, तो उससे उसका स्वाद और उसकी अवस्था नुकसानदायक हो सकती है।
3: अच्छा, तो अचार जो बना अपनी जो गृहिणी ने रहने, जो महिला ने रहने अपनी बहन ना अचार साल भर को बना, तो काम नमक की मात्रा ज्यादा करी चाहिए, काफी भी नमक खराब नहीं होता अचार।
4: हाँ हाँ वो भी है, और सरसों का तेल इसी वजह से उपयोग में करते हैं नमक के साथ।
3: हाँ हाँ।
4: और सिरका का उपयोग भी इसलिए करते हैं कि वो लंबे समय तक परिरक्षित रह सकता है, मतलब लंबे समय तक हम टिकाऊपन उसका रख सकते हैं, और स्वाद में और अन्य चीजों में उसके फर्क नहीं आता है। जी,
3: तो एक ही परिरक्षण की कोई विधि ना भी चेन है कि काका की विधि न का द्वारा इनको परिरक्षण कर ही सका अपन फल सब्जी न को?
4: हाँ, परिरक्षण में हमारे को अलग अलग तरह की विधियां हैं, उसमें प्रमुख फलों को जैसे सुखाने की विशिष्ट विधियां हैं, इसमें जैसे आम है, तो हम जैसे आपको मालूम होगा कि हम दालों में और अन्य जगहों पे अमचूर का प्रयोग करते हैं।
3: हाँ,
4: अमचूर सब किसान भाई जानते हैं, उसको दाल में स्वाद भी बढ़ाता है और साथ में वो हम लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। जैसे आम पापड़ हो गया, तो आम के रस को पतली परतों में सुखाने से, ये पुरानी विधि है, ये कोई नई विधियां नहीं है, ये लंबे समय से विधियां उपयोग में हो रही है। और इसको क्या हो रहा है कि आजकल किसान छोड़ के जो व्यापारी लोग है वो बड़े स्तर पे कर रहे हैं, और किसानों को भी ये चीज सीखना चाहिए और गृहणियों को भी ये चीज सीखना चाहिए, जिससे वो वोकल फॉर लोकल वाले प्रोडक्ट जो सरकार की मंशा है, वो गृह उद्योग गृहणी जो है अपना गृह में उद्योग स्थापित करके मुनाफा भी कमा सकती है। इसमें जैसे

0: आम पापड़ हो गया। आम पापड़ को हम मालूम हो तो एक इसका मैं एक आम पापड़ को उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि आम के रस को पतली परतों में सुखाने की ये बहुत पुरानी विधि है। तो हमारे जैसे आम के रस को बांस की चटाई पर फैलाकर उसके ऊपर से थोड़ी चीनी बुरक अपन सुखा लेते हैं बुरक कर, और
1: अच्छा
0: एक परत के सूख जाने के बाद उसके ऊपर दूसरी परत भी फैला देते हैं। यह क्रिया तब तक जारी रखती है जब तक 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी परत नहीं बन जाए।
1: अच्छा
0: उसके बाद इसे मन चाहे आकार में टुकड़ों में काटकर प्रयोग लाते हैं।
2: अभी मिला जैसा मोटा मोटा आम का पापड़ मिली रहा तो वो इसी विधि से बनाता होगा फिर।
0: हाँ, इसमें मैं आगे भी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रस और गूदे को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर गर्म करके ठंडा कर लेना चाहिए। फिर उसमें 5% चीनी और 0.05% साइट्रिक एसिड और 0.2% पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड मिला देना चाहिए। घी चुपड़ी हुई एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील की ट्रे में गूदे की एक पतली परत फैला दें और तेज धूप में सुखा लीजिए। इसके एक परत सूख जाने के बाद उसके ऊपर दूसरी परत फैला दीजिए और सुखा लीजिए। क्रिया तब तक जारी रखिए जब तक कि 1-2 सेंटीमीटर की मोटी परत नहीं बन जाए। और इसके सुखाने का काम हम धूप में भी कर सकते हैं, और डिहाइड्रेटर एक मशीन आती है छोटी वाली आजकल, जो किसानों को उद्यमी बनाने के लिए उद्यानिकी विभाग अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग योजना के हिसाब से घर घर में भी मशीन जो है वो उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ये 8-10 घंटे में सूख जाता है मशीन में, और धूप में सुखाए हुए अमावट की अपेक्षा मशीन में सुखा हुआ अमावट उत्तम होता है, क्योंकि मशीन में इसे नियंत्रित ताप मिल जाता है।
1: अच्छा।
0: सुखाने के लिए डिहाइड्रेटर का तापमान जो है 65 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप दीदी जानते होंगे कि अंगूर हो गया, अनार हो गया, पपीता हो गया, बेल हो गया। आप जैसे बेल है, अभी वर्तमान में बेल बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं, तो बेल का जूस बना के भी गृहिणी जो है वो परिरक्षित पदार्थों के रूप में डिब्बाबंद पदार्थों के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्योंकि बेल अभी अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है। गर्मियों में इसका अगर गर्मी पुराने लोगों ने कहा कि गर्मी में अगर बेल का जूस आपने बना के पी लिया तो वो कई विकारों से आपको दूर रखता है, उसमें साल भर आपको पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती। तो ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, उसमें अचार हो गए, उसमें जैम जेली मार्मलेड हो गए, और सब्जियां भी हो गई, गाजर है, जैसे गाजर को सुखाने के लिए हम मटर हो गई, करेला हो गया, फूल गोभी हो गई, बैंगन हो गया, सेम हो गया, मशरूम हो गया, प्याज हो गए, लहसुन हो गए। अभी लहसुन इस क्षेत्र में जैसे हमारे मालवा निमाड़ क्षेत्र में लहसुन काफी संख्या में होती है, लेकिन क्या होता है कि एक समय बाद वो खराब हो जाती है, तो लहसुन को ड्राई करके सुखा के उसका पाउडर जो है हम उपयोग में ला सकते हैं, उसकी चटनी बना के हम लंबे समय तक परिरक्षित कर सकते हैं। टमाटर की जैसे अधिक मात्रा में हो जाता है, और कई बार हम देखते हैं किसान उसको सड़कों पर फेंक देता है, लेकिन टमाटर को सुखाने के लिए हम देखते हैं कि उसके लिए भी ड्राइंग प्रोसेस होती है, और उसके बाद उसको जैसे पालक हो गया, और आप जानते होंगे हमारे इधर पुराने समय से मेथी की भाजी जो बनाते हैं, तो मेथी की भाजी में हम ताजी पत्तियों को सुखा के, हमारे घर में आज भी जो किसान है या गृहिणी है वो मेथी की भाजी सुखा के उसको 12 महीने खा सकते हैं, और एक सरल विधि है ये।
2: पांडे जी, आपने हमारा किसान भाई नख जो फल सब्जी जिना मौसम उपलब्ध नहीं हुए पर अपन वो मौसम में भी उपलब्ध कराड़ी सकान नो को उपयोग करी सकान लंबा समय तक, तो परिरक्षित फल सब्जी का उपयोग नो का टिकाव पन का बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी ना, जो हमारा किसान भाई थे इन्हीं चर्चा को लाभ जरूर लेगा। तो इतनी अच्छी जानकारी देने का लिए डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: भाई वीणा, अभी अपन परिरक्षित फल सब्जी ना को उपयोग और टिकाऊपन विषय पर भेटवार्ता सुनी, जिसमें की डॉक्टर अंकित पांडे उद्यानिकी सहायक उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से जानकारी ली रही थी बेन तुलसा दरगैया। भाई वीणा, हमारी भारतीय संस्कृति में खेती और लोक संगीत की जो जोड़ है वह बहुत मजबूत जोड़ है। जब किसान खेत में हल चलाए या फिर बुवाई करे तो जब वो गीत गुनगुनाए वही तो हमारी असली मिट्टी की सुगंध है। तो कार्यक्रम में अपन भी एक लोकगीत और सुनीला जिके गायो है बेन तृप्ति नागर ना, तो सुना अपन यो लोकगीत।

0: सूरज देवता अपनी पूरी तपिश दिखाई रहा है, पण किसान भाई बहना इन्हीं चिलचिलाती धूप में भी जायद की फसल खास तौर पर मूंग और उड़द की सेवा में जी जान से जुटिया हुई है। क्योंकि भाई बहना मूंग और उड़द न केवल कम समय में अच्छो मुनाफो दे बल्कि हमारी जमीन की जो ताकत है वो कभी बढ़ावा। तो इससे ही जुड़ी अपन ने एक वार्ता सुना कि जिको विषय है ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द फसल नामा प्रमुख रोग और कीट समेकित प्रबंधन। अन वार्ताकार है डॉक्टर बबली। तो सुना अपन यह वार्ता।
1: राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर बबली, पादप रोग विशेषज्ञ। आज के इस विशेष कृषि कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द में कीट एवं रोगों का समेकित प्रबंधन। जैसे कि रबी फसल की कटाई के बाद मूंग और उड़द कम समय में तैयार होकर किसानों को अच्छी आय देती है, लेकिन बढ़ता तापमान और मौसम में बदलाव के कारण इन फसलों में रोग कीट तेजी से बढ़ते हैं। यदि समय पर पहचान और नियंत्रण न किया जाए तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं प्रमुख रोग और कीटों के बारे में। जैसे हम बात करते हैं रोगों की, तो पीला मोजेक वायरस, इस रोग में पत्तियां पीले धब्बे दिखाई देते हैं और पौधा है वो कमजोर हो जाता है, बोना रह जाता है तथा जो उपज है बहुत कम हो जाती है। इसका प्रबंधन, इसमें जो रोगग्रस्त पौधा है उसे तुरंत निकाल कर नष्ट करें। सफेद मक्खी का नियंत्रण अत्यंत जरूरी है। खेत में 15 से 20 स्टिकी ट्रैप प्रति एकड़ लगाए। रासायनिक नियंत्रण में इमिडाक्लोप्राइड या थायोमिथाग्जाम 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरे हम बात करते हैं पाउडर मिल्ड्यू या चूर्णिल अशिता की। इस रोग में पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसी परत दिखाई देती है और पत्तियां सूखने लगती है। इसके प्रबंधन के लिए वेटेबल सल्फर जो कि 2 g/L के हिसाब से, या फिर आप हेक्साकोनाजोल 5 EC 1 ml/L के हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी हम बात करते हैं सरकोस्पोरा लीप स्पॉट की। इस रोग में पत्तियों पर भूरे या काले धब्बे बनते हैं और पत्तियां झुलसने लगती है। इसमें इसका जो नियंत्रण है उसमें प्रोपिकोनाजोल 25 EC@1 ml/L के हिसाब से या हेक्साकोनाजोल 1 ml/L के हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद है रूट रोड या विल्ट। इसमें इस रोग में जड़ तना सड़ने लगता है और पौधा मुरझाकर गिरने लगता है। इसका प्रबंधन के लिए अगर आप ज़्यादा मतलब कम पौधे हैं तो आप उस केस में, ज़्यादा पौधे मरे नहीं हैं उस केस में, आप ट्राइकोडर्मा वीरिडी उसको जो जड़ क्षेत्र है वहाँ पर ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या फिर आप कार्बंडाजिम प्लस मेनकोजेब का एक कॉम्बिनेशन आता है बाजार में साफ के नाम से आता है, वो 2 g/L के हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख कीट के बारे में। यह इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ेद मक्खी। तो सफ़ेद मक्खी के लिए अगर सफ़ेद मक्खी की जो जनसंख्या है वो कम है तो आप 3 से 5 ml/L के हिसाब से नीम तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं। एक बायो कंट्रोल आता है बिवेरिया बेशियाना के नाम से, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर अगर सफ़ेद मक्खी का जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है तो आप थायोमिथाग्जाम या फिर इमिडाक्लोप्राइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फली छेदक या तंबाकू की इल्ली के बारे में। तो यह कीट पत्तियों फलियों में छेद करके दानों को नुकसान पहुंचाती है। आप इसका प्रबंधन के लिए अगर इसकी जो जनसंख्या है वो कम है तो आप बीटी यानी कि बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बाजार में आता है, आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। एक हेलिकोवर्पा करके NPV बायो कंट्रोल से है, स्पेडोटेरा लुटियोरा इसके लिए, तंबाकू की कैटरपिलर के लिए जो कि बाजार में आपको इजिली मिल जाएगा। उसके बाद एजोटरेक्टिन है जो कि 2 से 3 ml/L के हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। नीम तेल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं जो बाजार में आपको आसानी से मिल जाता है। उसके बाद अगर इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो आप जो रासायनिक नियंत्रण भी कर सकते हैं, जैसे इमामेक्टिन बेंजोइट 80 g/acre के हिसाब से, या स्पेनोसेड 60 ml पर लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थ्रिप्स और एफिड्स। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाती है और पौधा कमजोर हो जाता है। इसका नियंत्रण के लिए आप नीम तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं या बाजार में विवेरिया बेशियाना मिलता है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको नियंत्रण करने के लिए, जो कि बाजार में आसानी से मिल जाता है। और इसके लिए आप 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या 1 से 2 किलो प्रति एकड़ भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद है आप जो महत्वपूर्ण कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि अगर जैविक फफूंद का स्प्रे हमेशा शाम के समय ही करें, बहुत ज़्यादा धूप है ऐसे कंडीशन में ना करें, तेज धूप में ना करें। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल फफूंद नाशक के साथ मिश्रण ना करें बायो कंट्रोल को। उसके बाद है 7 से 10 दिन के अंतर पर 2 से 3 स्प्रे करें, और इसमें जब आप स्प्रे करते हो उसमें स्प्रेडर या स्टिकर मिलाने से बहुत अच्छा उसका जो रिजल्ट है वो मिलता है। उसके बाद है कुछ ऐसी बातें हैं जो किसानों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जैसे हर तीन से चार दिन में खेत का निरीक्षण जरूर करें, सुबह शाम के समय स्प्रे करें, दिन में स्प्रे ना करें, और एक ही दवा का बार बार उपयोग ना करें, और आप संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें। अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग करते हो तो इससे बीमारी और कीट का खतरा बढ़ जाता है, और खरपतवार व रोगग्रस्त पौधे को हटाते रहें। और उसके बाद बात करते हैं हम कि इन सब सावधानियों के बारे में आप जरूर ध्यान रखें। आशा है कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आप सभी किसानों को बेहतर उत्पादन और समृद्ध खेती के लिए शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर बबली आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।
0: भाई बेंडा, अभी अपन ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द फसल नामा प्रमुख रोग और कीट समेकित प्रबंधन विषय पर वार्ता सुनी, जिकमें की अपना जानकारी दे रही थी डॉक्टर बबली, पादप रोग विशेषज्ञ। भाई बेंडा, यह जरूर से अपना याद रखना है कि भाई खेती में देख रेख ही सबसे बड़ी दवाई है। अगर तुम समय समय पर अपना खेत ना को निरीक्षण करता रहोगा तो बड़ी से बड़ी बीमारी का भी शुरुआती दौर में रोक ही सकता हो। भाई बिरना, अपना प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित नोडल विभाग की बैठक में कृषक कल्याण वर्ष 2026 में नवाचार और नवी योजना ना की समीक्षा करी, जिकमा उन्ना खंडवा और बुरहानपुर की जो मंडी ना है उकमा कपास उत्पादक जो भाई बिरना है, किसान भाई बिरना, उनसे लियो जाने वालों जो मंडी शुल्क है उका 1 रुपया से घटेन 55 पैसा करने को निर्देश दियो है, जिससे कि हमारा जो कपास उत्पादक किसान भाई बिरना है उनका अपनी कपास की जो उपज है उका बेचना में कठिनाई नहीं आए। अब मन करी रही है कि भाई बिरना कार्यक्रम में अपन एक लोकगीत और सुनी ला, तो सुना अपन भाई प्रेम सिंह मोहन सिंह देपालपुरिया को गायो यो लोकगीत।

भाई वीणा, अभी अपना सुनियो, प्रेम सिंह मोहन सिंह देपालपुरिया को गायो यो लोकगीत, और वक्त की सुई इशारो करी रही है कि आज के हमारो जो सफर है उसका यहीं विराम देने को, तुम्हारी बात का न्याज दू विराम, और सब किसान भाई वीणा का कू प्रियंका की राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम सुर्खियों में कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत नीदरलैंड संबंधों में नया अध्याय पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर अशोक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
2: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीदरलैंड्स में हैं और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स में क्या कहा।
4: साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल AI समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी, और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था। ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। और हाँ, चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था।
2: ऐसे समय में जब तमाम हम चीजें देख रहे हैं, वर्ल्ड में कई सारी चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण और इसके मायने क्या हैं?
3: विश्व में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो ये वाला जो दशक है शायद ये आपदा का दशक माना जाएगा, डेकेड ऑफ क्राइसिस माना जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पर आपदाएं आई हैं। एक तो पहले कोविड आया, उसके बाद युद्ध आया, और अभी हम देख रहे हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या पूरे विश्व में बहुत इसमें तंगी आ रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा है, 15 मई 20 मई तक ये हो रही है। कल प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अबू धाबी में थे, वहां पर उनके राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। केवल 2.5 घंटे का वहां पर उनका पड़ाव था, परंतु बहुत ही जिसे कहा जाए ठोस बात हुई और अपने संबंधों को बहुत तेजी से आगे लेकर जाया गया। और 4 देश जो है वो यूरोप के देश है। नीदरलैंड्स पहला पड़ाव है जहां पर की वो आज है, और कल यहां से स्वीडन में जाएंगे, फिर स्वीडन के बाद 2 दिन वहां पर रुककर गोटेनबर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग को एड्रेस करेंगे, और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन जो कि मोदरातना पार्टी से हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी। उसके बाद वो नॉर्वे जाएंगे ओस्लो में, जहां पर की उनकी बातचीत होगी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉन स्टोर के साथ, और वहां पर भी जैसे नीदरलैंड्स में उनकी मुलाकात हुई है अभी वहां के राजा और रानी के साथ, वहां नॉर्वे में भी वहां भी उनके किंग और क्वीन के साथ उनकी मुलाकात होगी। वहां पर नॉर्डिक समिट भी वहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके बाद आखिरी पड़ाव होगा उनका इटली में 19 और 20 तारीख को। और सभी जगह जहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने द्विपक्षीय संबंधों को तो उसमें और ऊर्जा मिलेगी, परंतु मेरे विचार से एक संदेश पूरे विश्व को भी जाएगा, जो भारत जो बदलता हुआ परिपेक्ष है उसमें बहुत ही एक्टिव है और अपने हितों को आगे ले जाने के लिए बहुत

0: तेजी, बहुत ऊर्जा और बहुत सक्षमता से काम कर रहा है।
1: अशोक जी, आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट है उनका ये। आपको क्या लगता है कि कोविड महामारी और जो जारी संघर्ष है, ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियां हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
0: देखिए, बहुत ऐसे विषय हैं जिनमें कि हम नीदरलैंड के साथ अपने संबंधों को, सहयोग को बढ़ाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। जैसे हमारे सेक्रेटरी वेस्ट ने कल जब उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उसको फोकस कहाँ पर रहेगा, तो उन्होंने कहा 3 T's पर रहेगा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, क्योंकि हमारा टैलेंट वहां पर हर यूरोप के देश में जाता है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से जाते हुए कही, उन्होंने कहा ये जो सारा उनकी यात्रा हो रही है 4 देशों में, यूरोप के देशों में, वो इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक सहयोग जो अग्रीमेंट है, वो इस साल के पहले 26 जनवरी को उसको पूरा किया गया। आपके सभी सुनने वालों को ये मालूम होगा, बातचीत की शुरुआत, नेगोशिएशंस की शुरुआत 2007 में हुई थी, तो मतलब 19 साल के बाद इसको हम तोड़ तक पहुंचा पाए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में जो बदलाव हो रहा है, सबको चाहिए, और यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा, जो हमको सप्लाई चेन ऐसी चाहिए जो कि रिलायबल हो, जो कि स्टेबल हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। और दोनों ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत की अर्थव्यवस्था $4 trillion से ऊपर है, यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को अगर देखा जाए तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था करीब $20 trillion के आसपास है, तीसरी सबसे विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जो इनका सहयोग होगा तो इन देशों के लिए बेहतर तो होगा, परंतु पूरे विश्व में व्यापार को स्टेबिलाईज करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होगा।
1: अशोक जी, अभी आपने 3 T's का जिक्र किया, और यूरोप की जब हम बात करते हैं तो लगातार बदलते हुए व्यापार नियम देखने को मिलते हैं, कार्बन टैक्स, सप्लाई चेन की बात होती है, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी भी चर्चा में एक एजेंडा के केंद्र में रहती हैं। तो भारत और नीदरलैंड्स अपने साझेदारी को ऐसे में किन रणनीतिक स्तर तक ले जा सकते हैं?
0: इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, परंतु हमको ये भी देखना है, क्योंकि अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमारे अपने हित में है। और आपने देखा होगा, जो चाहे वो SDG 2030 के हो, या फिर हमने अपना जो एक कमिटमेंट दिया है कार्बन फ्री, कार्बन न्यूट्रल अपनी इकोनॉमी को बनाएंगे बाय 2070, और हमने बहुत सारे ऐसे मापदंड किए हैं जो कैसे हम ग्रीन एनर्जी 2030 तक हम कैसे अपने 45% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को हम ग्रीन एनर्जी के द्वारा करेंगे। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी, आपको याद होगा 2015 में जब कॉप पेरिस में हुआ था, तो वो एक क्षेत्र है जिसमें हम आगे चल रहे हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है, और जो इंडो पैसिफिक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक पोजीशन दिया है इंडो पैसिफिक के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं जो हमको फ्री, ओपन, स्टेबल, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक की मांग है उनकी। नीदरलैंड्स तो अपनी गाइडलाइंस उन्होंने दी है, इंडिपेंडेंटली दी है 2020 में, और भारत का जो स्टांस है वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, और इसीलिए उसमें हम उनके साथ सहयोग करते हैं। और टेक्नोलॉजी जहां बात है, स्टार्टअप्स की जहां बात है, भारत बहुत इसमें अग्रणी श्रेणी में आ गया है, बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है। और चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो UPI हो, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जो करीब विश्व में जितना भी ये डीलिंग होती हो कैशलेस ट्रांजैक्शंस की, तो उसमें विश्व में आधे से ज्यादा भारत में होती है हमारे यहाँ। तो हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और इन सब में जो यूरोपियन देश हैं, ये सब ही बहुत ही अग्रणी श्रेणी में हैं, और इनके साथ काम करके दोनों देशों के हितों को बहुत फायदा हो सकता
1: है। अशोक जी, भारत और स्वीडन की अब हम बात करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगले अपने दौरे में स्वीडन पहुंचेंगे, तो वहां भी साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात जरूर होगी। तो इस यात्रा से क्या चीजें निकल करके आने वाली है, अगर मैं तकनीकी निवेश, रणनीतिक सहयोग और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों की बात करूं?
0: जहां तक टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है, उसमें तो बिल्कुल सबसे आगे है, अग्रणी है। मैं रक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे है, और अभी हमने ये 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उसमें उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है साब, जो कि ग्रिपेन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, उनका यहाँ पर अभी पिछले साल इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, जो कि हमारे

0: रक्षा के संबंधों को बहुत आगे लेकर जाएगा। ग्रीन ट्रांजिशन में भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं स्वीडन के साथ और इनको आगे और जोर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जब बातचीत होगी, जैसे मैंने कहा, गोटेनबर्ग में एक समिट को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन, उसके साथ साथ यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन वो भी वहां पर होंगी, उनसे भी बातचीत होगी। तो जो हमारा इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसको भी आगे कैसे ले जाया जाए, इस क्षेत्र में कैसे आगे ले जाया जाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। देखिए, ये वाले देश हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, पांच देश हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है। इनके पास ये छोटे देश हो, इनकी छोटी जनसंख्या हो, छोटा इनका क्षेत्रफल हो, परंतु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बिल्कुल ही अग्रणी है। और स्वीडन तो और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो पहला इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था वो 2018 में स्वीडन ने ऑर्गेनाइज किया था, दूसरा वाला 2022 में डेनमार्क में हुआ था, और अभी जब नॉर्वे में फिर से तीसरा इंडिया ईयू नॉर्डिक समिट होगा, तो इसमें पांच देश के, जो पांच देश मैंने गिनाए हैं, उन सभी देशों के प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे, उनसे बातचीत होगी और अपने संबंधों को इन सभी क्षेत्रों में आगे कैसे और ले जाया जाए और कैसे गहरा किया जाए उसके ऊपर बातचीत होगी।
1: अशोक जी, बदलती हुई जो हमारी ब्लू इकोनॉमी जिसमें तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल की बात हो, सस्टेनेबल फिशरीज की हम बात करते हैं, ऑफशोर विंड और ग्रीन शिपिंग जो कि आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में नॉर्वे के साथ हमारी जो साझेदारी बढ़ रही है उसको और प्रगाढ़ करने में प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है।
0: देखिए, जहां तक आप नॉर्वे की बात करते हैं, और स्वीडन और फिनलैंड भी काफी हद तक उसी क्षेत्र में आते हैं, डेनमार्क भी उसी क्षेत्र में आता है, ये सब देश वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो चलते हैं। नॉर्वे में फॉसिल फ्यूल्स, गैस, ऑयल बहुत अधिक मात्रा में है, जो कि उनके नॉर्थ सी से, वहां से ऑफ सी जो उनके एक्सप्लोरेशन है उससे लेकर उसका वो प्रयोग करते हैं। आपके सुनने वालों को ये मालूम होगा, जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से तेल लेना, गैस लेना बंद कर दिया था, तो तब नॉर्वे और डेनमार्क से बहुत मात्रा में यूरोप के देशों को ये सप्लाई हुआ था। और नॉर्वे में 95% से ज्यादा जो वहां पर वाहन हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब वहां पर फॉसिल फ्यूल के से नहीं चलते हैं। और इसीलिए जब हम भी अपनी एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी की आपने बात की है, और ब्लू इकोनॉमी में भी नॉर्वे बहुत ही अग्रणी है। फिशरीज में वो बहुत ही उसको माहिरता हासिल है। हमारे अपने क्षेत्र में तो हम जिसे कहा जाए पायरेसी है, मरीन डोमेन अवेयरनेस है, साउथ चाइना सी में है, जिसमें हम क्वाड के माध्यम से हम सहयोग करते हैं और देशों के साथ, तो ये इन देशों के साथ भी उन्होंने कैसे इस दिशा में उन्होंने कैसे प्रगति की है उसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो हमारे लिए वाटर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वाटर के मामले में चाहे नीदरलैंड्स हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड, ये सभी देश, स्वीडन हो, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रगति की है, जिनके साथ हम बड़ा अच्छा अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं।
1: जी अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचेंगे, और इटली के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई गति मिली है हाल के वर्षों में, तो ऐसे में शिप बिल्डिंग की बात हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, या फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में काम करने की बात हो, तो इटली के परिप्रेक्ष्य अगर मैं आपसे पूछूं तो इस दौरे का प्रधानमंत्री का क्या महत्व है?
0: जी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम 2023 में, क्योंकि जॉर्जिया मलोनी वहां की प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री मोदी के, अगर देखा जाए 2023 से लेकर अभी तक 2026 तक 3 सालों में दोनों प्रधानमंत्री करीब 7 बारी एक दूसरे से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में 3 बारी वहां पर गए हैं, परंतु ये पहली बार उनका द्विपक्षीय वहां पर दौरा है, तो इसीलिए इसके ऊपर भारत और इटली के सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इटली सबसे एक बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी इससे बड़े होंगे, परंतु इटली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है, उससे हमारा सहयोग बड़ा अच्छा होता जा रहा है। अगर आप देखें यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए 2024 में, तो वहां पर जर्मनी की पार्टीज हैं, फ्रांस की पार्टीज हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाई, परंतु जॉर्जो मेलोनी की जो पार्टी है उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, तो उनकी शक्ति जो है यूरोप में वो काफी बड़ी है। और भारत

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
4: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो।

फरो के रंग से गुलजार शोला जार भी है, फजाए हुस्न की निखत से मुश्क बार भी है, दिलों में दर्द के अंदाज बेकरार भी हैं, मसरतों के ये दिन जाने रोजगार भी हैं। बहार बन के चलिया कि जा रही है बहार भी है।

इस गीत के साथ ही आज के दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम के सफर को यहीं संपन्न करने की इजाजत दीजिए आसिफ अली को नमस्कार।

0: दिल ने फिर याद किया। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, 8:45 होने को हैं। समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। एएसएमएल उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत एएसएमएल गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री

0: भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को

0: स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रहना।
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: फिल्म उमराव जान में सुनिए आशा भोसले को।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: किशोर कुमार। पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल ओर आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
0: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
2: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
3: साथिया
0: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जय ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: जिक्र केएस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन, 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजु का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज।

फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाए का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन ने इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है

0: चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।
1: फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने मां राधा का अमर किरदार निभाया।

एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती है।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: और माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो?
4: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
5: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से

0: 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक
1: तो

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ।
0: फिल्म ABCD 2।

0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
1: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: गीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: राकेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दादा आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो एलबी लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नैन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल्ला था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।

0: बहुत अच्छी बात है।
1: और मैं चला जा रहा हूँ और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: नमस्कार।
1: आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र।

0: पुत्र है। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विथ मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें 3 रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत 3 ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से, द्रुत 3 ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती

0: बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। एएसएमएल उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत एएसएमएल गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sectors